गाना हॉट है। ये था गुची, संग बाय अरूप खान फीचरिंग रियाज अली, कंपोज्ड बाय प्रीतिंदर, लिरिक्स बाय कप्तान एंड म्यूजिक बाय मिक्सिंग। फुल ऑन मिर्ची बैंगर, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rambala. Burga, burga. Na viva la burga.
1: हेलो
2: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
1: वेरी फाइन, थैंक यू।
2: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
1: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ, नहीं लगता उसका।
2: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
1: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
2: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
1: गेम है क्या ये?
2: आओ मिलो शिलो शालो।
1: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
2: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
1: पूरी कोशिश।
2: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
1: आओ मिलो
2: शिलो शालो,
1: शालो
2: कच्चा धागा।

0: अच्छा धागा।
1: रेस लगा लो।
0: रेस लगा लो।
1: 10 पत्ते तोड़े।
0: 10 पत्ते तोड़े।
1: 1 पत्ता कच्चा।
0: 1 पत्ता कच्चा।
1: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे। 10 पत्ते तोड़े।
0: तोड़े
1: या मिस्टर श्रीवास्तव, 10 पत्ते तोड़े। 10 पत्ते तोड़े।
0: 10 पत्ते तोड़े।
1: हिरण का बच्चा। हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
0: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू।
0: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू।
1: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को।
0: श्रीवास्तव
2: बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
0: यार ये कोई सुनेगा तो नहीं।
2: सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at STT Snow. Tickets available in all leading ticketing platforms.

फाइनली जिसका इंतजार था वो आ ही गया। वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सिंपली आफरीन राइट हियर एंड थर्सडे आ गया है, यिपी। मतलब देखो वीक तो खत्म नहीं हुआ है बट मेंटली हमने वीकेंड को थोड़ा थोड़ा वेव करना, हेलो हाई करना शुरू कर दिया है एंड आई थिंक थर्सडे मॉर्निंग हैव देयर ओन मूड। मंडे वाला प्रेशर नहीं होता, वेनसडे वाली कितना और बाकी है वाली ऐसी फीलिंग नहीं आती, बस एक छोटी सी सैटिस्फैक्शन कि ओके ओके वी हैव ऑलमोस्ट मेड इट, है ना। तो अगर आप ऑफिस के लिए निकल चुके हैं, स्कूल ड्रॉप चल रहा है, कॉफी हाथ में है या भी डिसाइड कर रहे हैं कि आज क्या पहने, आज क्या करें, कैसे दिन की शुरुआत करें, तो वेरी गुड मॉर्निंग कतर, मैं ऑलरेडी आ चुकी हूँ यहाँ पर आपके अगले चार घंटे को टेक ओवर करने के लिए ऑफिशियली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

वेल, अगर आप कोई रेस्टोरेंट रन करते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हैं, या मे बी यू आर दैट पर्सन हुज कैमरा रोल इज बेसिकली अ लव लेटर टू कतर, देन लिसन अप. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai this beautiful morning. And Afreen kehna chahti hai that application for the Qatar Tourism Award 2026 are open. Aur aapke paas iske liye apply karne ka waqt hai 16th of September tak. Well, bata do aapko, this is the fourth edition of the awards organized by Qatar Tourism in collaboration with UN Tourism, recognizing people, businesses and organizations contributing to Qatar's tourism experience. Ab yahan ki categories ki baat kare to range kaafi interesting hai. Service excellence, gastronomic experiences, iconic attractions and activities, world-class events, digital footprint, smart and sustainable tourism and community leadership. Lekin meri favorite little update this year ye hai that content creators all years up, if you're listening to me, because the digital footprint category now includes a new outstanding Qatar Vlog of the Year award. So, agar aapka content actually showcase karta hai Qatar को, एक खतर की कहानी बताता है, apparently your endless shooting and editing has somewhere rather official to go now. And participation पता है बिल्कुल भी free है. Qatar Tourism is also conducting workshops to guide applicants through registration criteria and submissions, and support is available through the 106 contact center. सुन रहे हो आप, 106 contact center. So basically, don't just do good work and hope somebody notices. कभी कभार खुद को आपको अपने आप को विजिबल करवाना पड़ता है कोई कमरे में. वेल, एप्लीकेशन क्लोजेस ऑन 16th ऑफ सितंबर. सो इफ दिस साउंड्स लाइक यू और समवन यू नो, मे बी फॉरवर्ड दिस इंफॉर्मेशन बिफोर दे से यार मुझे तो पता ही नहीं था. माइक से दिल तक आफरीन है यहां पर सब कुछ बताने के लिए. ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन,
2: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात कर रहे हैं, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
3: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
1: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव

Mind it. Are you made it, Jason?

0: Well, doesn't it feel like a weekend all today? Yo Yo Honey Singh ki awaaz mein ye gana right around Mirchi. Very good morning and welcome back. Simply Afreen ka saath hai this beautiful morning and aap meri morning honestly beautiful kar dete ho. Itne pyare pyare se messages hai. Good morning Afreen, have a great weekend. You too Alishan, have a great weekend. Assalamualaikum, subah khair, aapka din acha guzre aur Allah pak aapko dher sari khushiyan aur kamyabiyan. How sweet, mashallah, ameen. Good morning and walaikum assalam. Aapko bhi वैसे इनका नाम क्या है? अरे यार नाम नहीं लिखते हो आप, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हो. मोहम्मद खालिद यार, यस. उसके अलावा हरपाल संधू जी का मैसेज है, हैव अ ब्लेस्ड डे. सुनील कुमार कहते हैं गुड मॉर्निंग, हैव अ ब्लेस्ड डे. एंड यस विद दिस, ये मेरी लिस्ट थी आज के गुड मॉर्निंग मैसेजेस की. अगर आप भी गुड मॉर्निंग शुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं, देन 5000196 इज माई व्हाट्सएप नंबर. एंड नाउ लेट मी स्ट्रेट डाइव इन टू आज का वेदर अपडेट.
1: नाम तो जानते हो मेरा, तापमान सलमान.
2: वेदर अपडेट.
0: वेल वेदर ये कहता है मैक्सिमम टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम 32 डिग्री सेल्सियस है. हालांकि हमें लग रहा था कि बार अब तो सितंबर आ ही गया है, अब तो क्या अच्छे दिन आ ही गए. हाँ एक चीज है, इफ यू लुक एट द पॉजिटिव साइड कि हाँ ह्यूमिडिटी जो है वो आपको कम लगेगी, काफी कम महसूस होगी, क्योंकि कल के मुकाबले अगर देखा जाए तो ये 32% ही है. हालांकि ये अगस्त जुलाई में इसका सिलसिला 60-70% तक ऐसा कुछ रहता है, 80% तक भी जाता है. सो यस, पसीने शायद थोड़े से कम आएंगे. हवाएं चल रही हैं 18 किलोमीटर पर आवर पर, सो इतनी गर्मी का एहसास होगा नहीं. हैविंग सेड दिस, आई हैव अ लॉट ऑफ गुड मॉर्निंग मैसेजेस अगेन ओवर हियर. अजीत सिंह का कहना है गुड मॉर्निंग मैम, अरे यार आफरीन कहो. उसके अलावा आई हैव समवन मोर मैसेजिंग हियर बट आई डोंट नो द नेम, बट हाँ गुड मॉर्निंग आपका भी मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ. गुड मॉर्निंग, हैप्पी वीकेंड. आपको भी हैप्पी वीकेंड. एंड गणेश का भी मैसेज है गुड मॉर्निंग. तो भाई मेरा काम हो गया सबको गुड मॉर्निंग कहने का, तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़े. अरिजीत सिंह ने कक्कड़ कनिका कपूर की आवाज है. Yet again, a Shahrukh Khan banger. Enjoy it on Mirchi Thought.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती। क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
2: मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन का साथ है आपके साथ और अगला गाना केके की आवाज में दिस बिंदास बंदी ब्रिंग यू द ट्रैक बंदा ये बिंदास है व्हाट अ सॉन्ग या यू गोना टोटली एंजॉय इट. लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा तो देख ले आगे बढ़ने से पहले 7:02 की तरफ हो रहा है. एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

0: वेल माई फ्रेंड्स, नाउ दैट द वीकेंड इज हियर, एक सवाल तो उठ ही जाता है, भाई ओटीटी पे क्या आ रहा है? आफरीन बताओ तो जरा। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को। एंड थैंकफुली इस हफ्ते वीकेंड पर ऑप्शंस जो है काफी डिफरेंट डिफरेंट जॉनर्स के हैं।
1: अरे भाभी जी, एकदम लेटेस्ट डिजाइन है,
2: फ्रेश है, फ्रेश है,
3: एकदम नया आया है।
4: अरे मार्केट में नया क्या है?
0: वेल ओटीटी मार्केट में नए की अगर बात करें तो अगर आपको क्राइम एक्शन है, थोड़ा सा देसी रग्ड ड्रामा पसंद है, देन घमासान शुड बी ऑन योर लिस्ट। प्रतीक गांधी प्लेज एन आईपीएस ऑफिसर हु इज आफ्टर अ फियर डेकॉयड, प्लेड बाय अर्शद वारसी। एक्चुअली यस, ये Z5 पर है और इसके डायरेक्टर पता है कौन है? तिग्मांशु धूलिया। नाम सुन के अगर इंस्टेंटली कनेक्ट नहीं हुआ तो मैं बता दूं, पान सिंह तोमर, ये वाली उन्होंने डायरेक्ट की है मूवी हासिल, साहेब बीवी और गैंगस्टर, ये सारी मूवीज यस तिग्मांशु धूलिया की ही डायरेक्ट है। सो यू नो दिस वर्ल्ड ऑफ क्राइम पावर एंड दिस एवरीथिंग इज प्रीटी मच फैमिलियर टेरिटरी फॉर हिम। नाउ लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। प्राइम वीडियो पर एक और है जो है रेवोल्यूशनरीज, निखिल अडवाणी की हिस्टोरिकल ड्रामा सीरीज है, विच टेक्स अस इनटू द स्टोरीज ऑफ यंग रेवोल्यूशनरीज ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। सो हिस्ट्री विथ एक्शन एंड ड्रामा, देन दिस वन्स फॉर यू। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। नेटफ्लिक्स पर गंधारी इज ऑलरेडी स्ट्रीमिंग। तापसी पन्नू इन अ वेरी इंटेंस एक्शन थ्रिलर, एक माँ है जो अपने किडनैप डॉटर को ढूंढ रही है, सो डेफिनेटली बहुत डार्क है और बहुत ही इमोशनल पैक्ट एज वेल। बट पर्सनली एक शो है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी एंड दैट इज चुंबक, बिकॉज दिस फील्स सो मिडिल क्लास फैमिली फेमिलियर। मतलब हम बहुत रिलेट कर पाते हैं, वो नेबर्स जो बिना अपॉइंटमेंट हमारे घर आ जाते हैं, आपके घर में क्या हो रहा है उनको आपसे पहले पता होता है, और टेक्निकली पड़ोसी होते हैं बट प्रैक्टिकली एक्सटेंडेड फैमिलीज, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्ड है ना, जहां हम बचपन में इसी माहौल में बड़े हुए हैं। एंड दैट्स दिस एंटायर स्टोरी इज अबाउट चुंबक। 5 फैमिलीज है, एक कॉलोनी है, एंड एवरीबडी इन्वॉल्व्ड इन एवरीबडी एल्स लाइफ, और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टार कास्ट है। नीना गुप्ता, देवेन भुजानी, सुमित राघवन, सुमित व्यास, अर्जुन भिजलानी, वाओ आई जस्ट लव दिस एंसेंबल कास्ट। एंड वेल नेटफ्लिक्स पर ये है। सो कितनी सारी चीजें बता दी ना मैंने, थ्रिलर, हिस्ट्री, एक्शन, फैमिली ड्रामा, एवरीथिंग आपके लिए ऑप्शंस है दिस वीकेंड। माइक से दिल तक आप फ्री हैं आपके साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Escava la poscabana, sacabana.
2: Cabana.
1: Murga, murga. La vieja la murga.
2: Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Hello.
3: कौन?
4: हेलो।
3: हाँ बोलो, कौन?
4: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोल, कौन रहा है?
4: बोल कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
3: बोल कौन रहे हो?
4: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ बोला था।
4: ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
3: हाँ बोलो।
4: यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
4: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सर। यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
3: कब आया था, कब घुसा अंदर?
4: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे
3: बोलो।
4: ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
3: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
4: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
3: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे आपकी कोई बैठा के क्या क्या फेंक

0: दे रही है यार।
1: सीवर में मरा रहा है तू,
0: तो गाली तो मत दो।
1: हेलो
0: हेलो,
1: फिर फोन कर दिया तूने?
0: अच्छा सीवर साफ हो जाएगा, एक काम करो, एक चीज बोलो।
1: क्या बोलो?
0: कुकड़ू।
2: सर आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेन करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या है?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
4: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए। मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snoonu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah, live

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।

पाजी, तुसी इतनी एनर्जी कहाँ से लेकर आ जाते हो यार? द राइट काइंड ऑफ एनर्जी वी नीड दिस मॉर्निंग. दलीर पाजी की आवाज में ये गाना ऑन मिर्ची. वैसे देखो, कहने के लिए तो हम कहेंगे कि हमें तो कतर का चप्पा चप्पा पता है. यहाँ के हर एक कोने कोने में देखा जाए तो एक्चुअली कोने कोने में हर जगह यहाँ पानी पानी है, बिकॉज कतर इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स. और जहाँ हमारा वेदर ना थोड़ा सा बेहतर होते जा रहा है, एंड वो लोग होते हैं ना जो बिल्कुल बीच पगलूज होते हैं कि भाई उनको तो इंतजार ही नहीं रहता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का, बस सेप्टेम्बर लग गया कि दे आर बैक टू द बीचेस, भले ही वो रात के 12 बजे 2 बजे हो. यस, दे आर देयर इंजॉइंग. एंड वो एक अलग ही नजारा होता है कि आप सुबह सुबह जो होते हैं आप एक बीच से शुरू करें. सो वेल, यस, बीच का मौसम जो है फिर से थोड़ा बहुत तो शुरू हो ही चुका है. एंड इफ यू आर प्लानिंग दिस वीकेंड कि हम चलो कोई बीच चले जाए, वैसे तो आपको बहुत सारे बीचेस के नाम पता है, लेकिन कभी कभार एक जेंटल रिमाइंडर जो होता है तो वो एक काम आ जाता है. जैसे कतर के कुछ बीचेस के नाम बताऊं, जैसे फुवारत बीच है, देन वी आल्सो हैव द अलगारिया बीच व्हिच इज वेरी क्वाइट फैमिली फ्रेंडली क्रॉस लाइन. उसके अलावा मरूना बीच है जहाँ का पानी बहुत ही शैलो है, बहुत अच्छा बीच है. एंड ऑल द बीचेस इन कतर इज ऑब्वियसली वेरी क्लीन. अल मफजार बीच भी एक है, इट्स अ रिमोट बीच जहाँ से मैंग्रोव सीनरी भी आपको नजर आती है. एंड ऑफकोर्स द मोस्ट पॉपुलर बीच आई वुड से एंड पब्लिक का फेवरेट इज द सी लाइन बीच. और यस, उससे भी ज्यादा पॉपुलर अगर कुछ है तो दैट इज द खोरल अदाय, मतलब वो हमारा इनलैंड सी वाला बीच. अरे यार, वहां पे जाने के लिए तो बहुत मेहनत मुशक्कत लगती है, 4x4 इज रिक्वायर्ड. एंड I'll tell you one thing, a little embarrassing thing I would say, कि मैं कतर में पिछले 13 साल से हूँ, ठीक है. मेरे पास 4x4 नहीं है, दैट इज़ प्रॉबेबली द बिगेस्ट रीजन कि मैं अभी तक इनलैंड सी नहीं गई हूँ. कोई मेरे को लेकर जाओ यार, प्लीज़. कोई अगर मुझे सुन रहा है तो मुझे इनलैंड सी देखना है, बहुत ही अरसों से देखना है, एंड आई हैव नॉट येट विजिटेड. चले खैर, अगर आप वहां जा रहे हो तो मुझे फोटो जरूर भेजिएगा, उससे खुश हो जाऊंगी मैं. मीनवाइल मधुवंती बागची की आवाज में एक लगाना ओई अम्मा. माइक से दिल तक आफरीन के साथ बने रहिएगा और मेरी चीज हॉट.

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn?
1: Yes!
0: To play?
1: Absolutely!
0: To grow?
1: With Maserati!
2: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
1: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
2: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
3: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: दर्दार सांस तक ये लगा सर, रफ्तार की आवाज में और बड़ी रफ्तार से मुझे लगता है कि हमारा ये हफ्ता गुजरा है, एंड दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो इन अ वे। और हर थर्सडे को ना मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस रफ्तार से हफ्ता गुजरा है ना, उस रफ्तार से ना वीकेंड ना गुजरे, एकदम धीमे धीमे हौले हौले गुजरे। लेकिन फिलहाल तो ये वक्त आ गया है कि हम यहाँ पर लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट खेले। यस बॉस, रेडियो सेट्स के वॉल्यूम करो हाय। आफरीन एक नया सीन लेकर आई है, एक नई मूवी से। नो बॉस, पुरानी मूवी से। कौन सा सीन है आप सुन के शायद पता लगा ही दोगे। चलिए, हियर इट इज।
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट। सीन टेस्ट।
2: कौन है बे? तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूँ मैं।
3: हाँ, कौन है बोल?
2: तुम आज कॉलेज नहीं गए?
0: ओके, आई थिंक सो। दो आवाज आपने पहचानी है। आई मीन, एक तो लेजेंडरी आवाज है भाई इन द क्या कहते हैं, इन द वर्ल्ड ऑफ विलन्स इन बॉलीवुड, और दूसरी जो है वो भी अच्छी खासी, आई मीन वो पहले हीरो थे और आजकल नई मूवीज में ना विलन का किरदार निभा रहे हैं। अच्छा खासा हिंट दे दिया मैंने। 5000196 है। सुलेमान का मैसेज आ गया है जो बिल्कुल सही है। कुमैल, यू आर द फर्स्ट वन यस टू मैसेज टूडे ऑल्सो, और आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। सो वेल, अगर आपको थोड़ा सा और सुनना है बाकियों को तो मैं फिर से सुना देती हूँ, क्योंकि हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है।
2: कौन है बे? तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूँ मैं।
3: हाँ, कौन है बोल?
2: तुम आज कॉलेज नहीं गए?
0: ओके, व्हाट अ हिलेरियस मूवी दिस वाज। वी विल टॉक अबाउट द मूवी लेटर, लेकिन राइट नाउ मूविंग अहेड विद द सॉन्ग। थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं मेरे प्लेलिस्ट को अब। हाय, लकी लकी आवाज में ये गाना विल ऑलवेज बी अ फेवरेट ना। एंजॉय इट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
2: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।

0: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
5: The Mentalist Suhani Shah.

0: वेल अटक तो आप गए हो, सब कुछ पहचानिए, लेकिन मूवी का नाम सोच रहे हो अभी? वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है राइट हियर ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. यस बॉस, बहुत सारे राइट आंसर्स आए हैं यहाँ पर. वेल, पहले तो ये बता दूं कि हम यहाँ पर लाइट कैमरा सीन टेस्ट खेल रहे थे. जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं ना, गुड मॉर्निंग, शुड मॉर्निंग, वेलकम जी हमारे गेम में. और आप भी खेल सकते हो. अभी व्हाट्सएप नंबर बता देती हूँ पहले ही, 5000 1896. नोट कर लिया ना? अब सवाल सुनो, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसा गेम खेल रहे हैं जहाँ मैंने सीन सुनाया था एक मूवी का, और ये ना 90s से जुड़ी हुई मूवी थी. आपने गेस करना था बस, आखिर ये मूवी है कौन सी. बहुत ही फनी मूवी थी. पहले हम यहाँ पर सीन सुन लेते हैं.
1: लाइट्स कैमरा सीन टेस्ट. सीन टेस्ट.
2: कौन है बे?
3: तेरी अम्मा ने भूत की मेहंदी रचाई थी ना, वही भूत हूँ मैं.
2: हाँ, कौन है बोल?
3: तुम आज कॉलेज नहीं गए?
0: ओके वही भूत हूँ मैं. क्या डायलॉग थे इसके मूवी के, वेरी हिलेरियस यार. बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ चलो मैं कुछ का यहाँ पे सुना देती हूँ आपको ऑडियो. आई एम ट्राइंग टू प्ले द ऑडियो, लेट मी सी इफ इट वर्क्स. यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं. हाँ जी, हाँ मोहम्मद अख्तर जी.
4: आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम ऑफ द मूवी, बट दिस हैज बीन डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन.
0: हाँ जी, दिस इज राइट.
4: प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस मूवी अमरीश पुरी साहब.
0: हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन मूवी.
5: हाय.
0: हाँ जी. हाय,
5: आई एम राजू दास.
0: हाँ जी,
5: जो आप सुने वो फर्स्ट टाइम था अक्षय खन्ना.
0: अक्षय खन्ना भी थे.
5: महागुरु अमरीश पुरी.
0: ऑल राइट,
5: थैंक यू सो मच.
0: बट मूवी नहीं बताई आप दोनों ने भी, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके जरूर बताया है. जैसे यहाँ इनका नाम क्या है भाई, अपना नाम लिखा करो. खान आवेज, ओके. कुंवर जी, इन्होंने मैसेज किया है. देन आई हैव योर नाम इस्माइल. हाँ इस्माइल है, इनका मैसेज आया है. देन आई हैव त्रिशा, संजीवा, चार्ली, इब्राहिम, पप्पू शाफी, देन आलोक. अलोक, इट्स नॉट हंगामा बाय द वे. देन यस, देन आई हैव मोहसिन एंड सो मेनी इयर्स. सुलेमान और हुमैल का तो जवाब सबसे पहले ही आ गया था, और जवाब है दैट दिस इज हलचल. नो मोहम्मद अमर, इट्स नॉट मेरे बाप पहले आप. आई नो उसमें भी अक्षय खन्ना है, लेकिन उनके साथ में तभी परेश रावल थे, इफ आई एम राइट. दिस इज हलचल यार, बड़ी फनी मूवी थी. और हलचल का अगला गाना जो मैं बजा रही हूँ ना, आई थिंक सो करीना कपूर बहुत खूबसूरत लगी इन दिस मूवी. दैट वॉज अ टाइम when Kareena Kapoor was at her peak, भले ही नॉट इन एक्टिंग बट इन हर लुक्स शी वॉज सो ब्यूटिफुल. उदित नारायण और सुजाता की आवाज में ये मूवी का ये गाना इज सो क्यूट, आप खुद ही सुन लो. बिकॉज आई रिमेम्बर रोमांटिक सॉन्ग ये गाने में दोनों एक दूसरे को प्यार भी कर रहे हो और वही गुस्सा भी जता रहे. एंजॉय दिस ट्रैक ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings. Mirchi, Mirchi Mornings. Mirchi Mornings.
0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
2: 89.6
0: Mirchi 1. It's hot.
3: वेल मिर्ची मॉर्निंग्स पर आफरीन तो आ गई है। आप लोग भी अटेंडेंस लगा ही लीजिए यहाँ पर। यार ड्राइव तो अच्छी होगी, स्मूथ तो होगी कतर के रास्ते ऐसे, लेकिन साथ ही साथ एंटरटेनिंग भी होगी मेरे साथ। तो चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। यो हनी सिंह और जैस्मिन सनलस की आवाज में किक मूवी का ये गाना ऑन मिर्ची। लेकिन मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 8:02 की तरफ। इट्स हॉट
4: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: That is you, your Honey Singh ki awaaz mein. Jasmine Sunless ka saath, right here on Mirchi. Welcome back and very good morning. It is 10th of September aur time ho chala hai ki hum hamara aaj ka gold rate sun liye.
1: Gold update.
0: देखिए आज का जो गोल्ड अपडेट है वो ये कहता है पैम्प 1 ग्राम लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 591 कतरी रियाल, पैम्प 5 ग्राम बार इज फॉर 2772 कतरी रियाल, पैम्प 10 ग्राम बार इज फॉर 5475 कतरी रियाल, वेयर एज पैम्प 1 आउंस फॉर्चुना बार इज फॉर 16925 कतरी रियाल एंड 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 62857 कतरी रियाल. ये थे आज की गोल्ड अपडेट्स. तो सोना लेना हो या ना लेना हो, लेकिन भाव हमेशा पता रहना चाहिए, राइट? माइक से दिल तक आफ्रीन है आपके साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
2: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अल्परदान एक्सचेंज, पैम्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर. माय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
3: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे.
2: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द ऐप नाउ.

0: Mefit Milchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vidva la burga. Milchi, burga.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज साफ नहीं आ रही, कम आ रही आवाज।
3: भाई साहब आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार ये ड्रिल मशीन कैसे दिए, ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले ही।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे भसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने ले गया
3: तुमने, पहले क्यों नहीं बताया?
2: यहाँ पे ड्रिल मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: माँ का तू मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया।
3: मेरी बात सुन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है आप तो, मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
6: it's hot. The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC.
6: और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get

0: yes, yes. Say it again.
1: Yeah. देखो अब जो कि मैं आई हूँ तो आपके फायदे की बात ही करके जाऊंगी। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची वन एंड इट्स टाइम के थोड़ा सा एक्सचेंज रेट पर नजर डाल दें। वेल, आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट 1 रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.11, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.09, whereas बांग्लादेशी टाका इज एट 33.76, श्रीलंकन रुपीज की अगर बात करें तो इट इज एट 90.15 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.58। ये थे आज के एक्सचेंज रेट। घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: रेडी
6: रेडी
5: टू लर्न
6: यस
5: टू प्ले
6: एब्सोल्युटली
5: टू ग्रो
6: विद मेज़राती।
7: This school season, fuel every day with delicious and nutritious Maserati fresh products.
6: Milk, cheese, yogurt, labneh, eggs.
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
4: Mirchi Murga, driven by Carmel Group. Premium transportation, heavy-duty strength ke saath. Discover karo versatile Shockman heavy-duty trucks aur Ankai buses. Superior commercial vehicles, abhi Carmel Group par available hain.

सच कहो, मजा तो आता ही है जब 90s के गाने हम सुनते हैं ना, और स्पेशली आशा ताई की आवाज है, कुमार सानू की आवाज है, दीज आर लाइक लेजेंडरी वॉइसेस यार। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स, एंड इट्स टाइम कि हम हमारा गेम खेलें। अभी यार वीकेंड है और वीकेंड में मैंने सोचा चलो यार इजी पीजी आपके लिए रख लेती हूँ गेम। और गेम क्या है? मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स। वेल मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स है, और मिर्ची मिस्ट्री बॉक्स में से एक ऐसी चैलेंज निकला है आपके लिए जहां पर आपको ये तीन मूवीज में एक दूसरे से कनेक्शन बताऊंगी और आपने गेस करना है कि भाई ये मूवीज है कौन सी। ठीक है, सो यर इट गोज। वो कौन सी मूवी है जिसमें दो कम्प्लीटली निकम्मे लड़के एक अमीर लड़की से शादी करके खुद भी अमीर बनने का सपना देखते हैं और कंपटीशन करते करते एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। अब उनमें से एक हीरो की दूसरी मूवी है जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है जो एक मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट करता है और वाइल डीलिंग विद अ पर्सनल लॉस। और उस फिल्म की एक हीरोइन की दूसरी मूवी है जहां वो ट्रेन में कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देती है। बताइए कौन सी मूवी की बात कर रही है आफरीन यहां पर? एक नहीं, दो नहीं, तीन। कौन सी मूवीज है ये? पहली वो कौन सी मूवी है जिसमें दो कंप्लीटली निकम्मे लड़के एक अमीर लड़की से शादी करके खुद भी अमीर बनने का सपना देखते हैं और कंपटीशन करते करते एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं। अब उनमें से एक हीरो की दूसरी मूवी पकड़िए जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर है जो एक मिस्टीरियस कार एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। अब इसी फिल्म की एक हीरोइन की दूसरी मूवी है जो वो ट्रेन में कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देती है। बताइए कौन सी तीन मूवीज की बात कर रही है आफरीन यहां पर? फटाफट से 5000 1896 इज माई व्हाट्सएप नंबर, 5000 1896। इंतजार कर रही हूँ आपके जवाब का। एंड बिफोर आई मूव टू द नेक्स्ट सॉन्ग, दिस सॉन्ग इज एब्सोल्युटली स्पेशल क्योंकि ये एक खास डेडिकेशन आई है जहां पर फुरकान ये गाना मला उनकी स्पेशल को डेडिकेट करना चाहते हैं। सनम पुरी और नीति मोहन की आवाज़ में स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 का ये गाना, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक ट्रैक या मला। आई होप यू लव दिस सॉन्ग एंड दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू बाय फुरकान। एंजॉय दिस ट्रैक माइक से दिल तक आफरीन के साथ।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
2: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ।
1: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
3: The show was absolutely amazing.
4: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: वेल जुबिन नौटियाल की आवाज में सैयारा मूवी से ये गाना, एंड इट्स एक्चुअली डिफिकल्ट टू चूज वन फेवरेट सैयारा गाना. मुझे हम सफर भी पसंद है, बर्बाद भी पसंद है, सैयारा का टाइटल ट्रैक भी पसंद है, एंड आई थिंक सो काफी टाइम के बाद में एक ऐसी एल्बम ना इमरान हाशमी के टाइम पे आती थी ना, वैसी कोई एल्बम मुझे ये लगी, एंड इट्स स्टिल स्टेड. दैट्स वॉट इज इम्पॉर्टेंट. वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक. सिंपली आफरीन का साथ है दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, एंड ये मॉर्निंग तो और ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है ना, बिकॉज यार वीकेंड है हमारा दोस्त. और वीकेंड पर आज सवाल पूछा है मैंने आपसे, हमारा गेम जिसे मैं कहती हूँ वेल, तीन मूवी का कनेक्शन बताया था यहाँ पर, एक मूवी का कनेक्शन दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, और आपने गेस करना था तीनों मूवी कौन सी है. सो वेल हियर इट गोस, मेरा सवाल कुछ ऐसा है कि वो कौन सी मूवी है जिसमें दो कम्प्लीटली निकम्मे लड़के एक अमीर लड़की से शादी करके खुद भी अमीर बनने का सपना देखते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उनमें से एक हीरो की दूसरी मूवी है जिसमें वो एक पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाते हैं, जहां पर एक मिस्टीरियस एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करते करते वो अपने पर्सनल लॉस को भी डील कर रहे होते हैं. अब इस फिल्म की एक हीरोइन की दूसरी मूवी है जहां पर वो ट्रेन में मिले एक कंप्लीट स्ट्रेंजर को अपनी पूरी लाइफ स्टोरी सुना देती है. आई थिंक सो दिस वाज क्वाइट इजी ना. लेट्स हियर आवर लिसनर्स जवाब.
1: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम,
1: कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग.
0: बिल्कुल सही.
1: वो तीन मूवी है, अंदाज अपना अपना, तलाश और जब भी मेट.
0: ऑल राइट,
1: बाय बाय.
0: Bye-bye.
2: Hi, Afreen. Good morning.
0: Hey, Prinsen.
2: This is Prinsen here.
0: Yes.
2: The first movie is Andaz Apna Apna.
0: All right.
2: Second movie is Talash, where Aamir Khan plays the role of a police officer.
0: That's right.
2: And third movie is Jab We Met.
0: Okay.
2: I hope it is correct.
0: That is right. Yeah.
2: Have a lovely day.
0: You too have a lovely day.
2: Amazing weekend.
0: You too have a great weekend. And जिन्होंने हमें मैसेज करके बताया है, जैसे मुख्तार भाई यहाँ है, राज का मैसेज आया है, then I have ताहिर who's messaged me, किरण खरेशा जिसने मैसेज किया लेकिन आंसर गलत दिया है तुमने किरण, then we also have your कौन है नाम नहीं पता, मुआज़िम if I'm right, मुआज़िम ठाकुर, yes इनका भी मैसेज आया है, then I have someone here, रवि का भी मैसेज आया है, and also we have अपना नाम नहीं लिखते हो, अल्पिता इफ आई एम राइट, यस एवरीवन हैज सेड इट राइट. एंड विद दिस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक, विकी मेहता और भैरोस की आवाज में, जहां हमने इतने अच्छी अच्छी मूवीज की बात की, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट वन ट्रैक, बट आई थिंक सो आई विल गो बैक टू द 90s ओनली. अंदाज अपना अपना का ये गाना. दिस सॉन्ग गेव सो मच ओपी नैयर साहब का वाइब, राइट. Enjoy this track on Mirchi's Hut.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या है?
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है। रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरा बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।

0: Mirchi Mornings with Mirchi Afreen. It's hot.
1: 89.6 Mirchi One. It's hot.
2: Well, मिर्ची घड़ी का इशारा हो रहा है सुबह के 9:04 की तरफ और रोमी श्रेया घोषाल की आवाज में वन ऑफ अ नाइस ट्रैक. श्रेया घोषाल की आवाज में हर गाने प्यारे ही लगते हैं. सो यस अनदर वन ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
0: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर.

अरे तुझे पता है उसके साथ क्या हुआ था? और बस यहीं से शुरू होती है हमारी फेवरेट वाली एक्टिविटी यानी गॉसिपिंग की। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आप सुन रहे सिंपली आफ्टरीन को राइटर और मिर्ची मॉर्निंग्स। और ये जो गॉसिपिंग की अगर आदत है ना आपकी कतर में, तो ये बहुत महंगी पड़ सकती है आपको, क्योंकि ये अब कतर में एक्चुअली एक सीरियस मैटर बन चुका है। अंडर आर्टिकल 331 ऑफ कतर्स पेनल कोड लॉ नंबर 11 ऑफ 2004, इफ यू पब्लिकली स्प्रेड न्यूज, फोटोग्राफ्स और कमेंट्स कनेक्टेड टू किसी की प्राइवेट लाइफ या उनकी फैमिली लाइफ, आपको 1 साल की जेल हो सकती है या फिर फाइन अप टू 5,000 कतरी रियाल या फिर आइदर ऑफ दीज पेनल्टीज। एंड यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगा कि इवन इफ दैट इन्फॉर्मेशन इज ट्रू, किसी की प्राइवेट या फैमिली लाइफ से जुड़ी चीजें पब्लिकली शेयर करना कैन स्टिल लैंड यू इन ट्रबल। सो बेसिकली किसी की पर्सनल लाइफ की इन्फॉर्मेशन मिली है तो उसका कॉन्टेंट मत बनाओ, बिकॉज प्राइवेसी सिर्फ तब इम्पॉर्टेंट नहीं होती है ना जब हमारी बात हो, दूसरे की होती है तब भी इट्स इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो फिर अगली बार अगर कोई फ्रेंड कोई आपसे कहे ए पता है क्या एक जूसी गॉसिप है मेरे पास, किसी को बताना मत, तब उसको ये कहना वाओ परफेक्ट, तो फिर एक काम करना मुझे भी मत बताना, आप ना सेफ भी रहेंगे और ये 5,000 कतरी रियाल में कुछ अच्छी शॉपिंग कर लेना ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ राइटर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कौन?
1: पापा कहाँ हैं?
0: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
1: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
0: लेकिन आपको काम क्या है?
1: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
0: पापा ने कहा था?
1: चुप कर! पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
0: क्या हुआ अंकल?
1: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
0: अब मुझे क्यों डांट?
1: चुप कर!
0: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
1: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा है तूने?
0: पापा को ऐसे किस बात का बुरा लगा? मुझे ये भी नहीं,
1: पापा को किस बात का बुरा लगा इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि मैं उसको डांट देना।
0: लेकिन बुरी क्या
1: लगी? अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
0: बदतमीजी क्या करी
1: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
0: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
1: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
0: अंकल ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
1: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
0: क्या बोलूं?
2: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
0: रेडियो मिर्ची आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
1: चुप कर! मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: This show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

और जब ये बजते हम उसके साथ गाते रहते और अपने आप को रोक नहीं पाते। ऐसे ही अगला गाना बजा रही हूँ सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। And I'm sure कितने अरसों बाद आप अनुराधा जी की आवाज सुन रहे हो ना, आफरीन है ना, चुनकर ऐसे जेम सॉन्ग्स लेकर आती है। Enjoy it on Mirchi, it's hot.

0: देखो हम अक्सर कंप्लेन करते हैं यार दोहा की हवा में ना कितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है, तो ठीक है चलो हवा से अब पानी बना देते हैं। अब आप कहोगे यार छोटो आफरीन क्या सुबह सुबह मजाक कर रही हो, लेकिन अपेरेंटली मैं मजाक नहीं कर रही हूँ क्योंकि यही तो अगली खबर है।
1: क्या क्या, क्या खबर कदर?
0: खबर ऐसी है दैट लेक्विया सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज डिपार्टमेंट इन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है बदर। अब ये क्या करता है, ये हवा से मॉइस्चर जो ऑलरेडी प्रेजेंट होता है हवा में उसे कलेक्ट करता है, प्यूरिफाई करता है एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू ड्रिंकिंग वाटर। दिस इज एक्चुअली रियल, वो कहता है ना टेक्नोलॉजी, ऐसे ही कुछ हाल हो रहा है। And you know what? The numbers are actually quite impressive. इसके दो models हैं। The Indoor version, which can produce like around 200 liters of water every day, while the larger model can produce up to 5,000 liters of water a day. I mean, that's quite impressive. And here's the part which I found even more important, जो है कि बदर कैन रन ऑन सोलार एनर्जी एंड द सिस्टम हैज ऑल्सो बीन डिजाइंड कीपिंग पॉसिबल केमिकल एंड रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन इन माइंड। ये सब ध्यान में रखते हुए इसे बनाया है। एंड दिस इज नॉट जस्ट अ कूल पीस ऑफ टेक्नोलॉजी ना, ये पर्टिकुलरली यूजफुल इन प्लेसेस वेयर एक्सेस टू क्लीन वाटर बिकम्स डिफिकल्ट इंक्लूडिंग एमरजेंसी सिचुएशंस। अब इसके नाम के बारे में बात करते हैं और वही बहुत खास है। नाम बदर जो रखा हुआ है इसका, इट कैरीज अ वेरी स्पेशल मीनिंग। इट हैज बीन नेम्ड इन द ऑनर ऑफ बदर साद मोहम्मद अल हुमैदी अल दोसारी, जिन्होंने पिछले साल ही अपनी जान गंवाई थी इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। सो बस इनोवेशन भी है इसमें, सस्टेनेबिलिटी भी है, बैडनेस भी है और दोहा की ह्यूमिडिटी का बहुत ही अच्छा सोल्यूशन यहाँ पर या फिर उसका बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया जा रहा है। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, राइट ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: Need to send money home? Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
6: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
7: The show was absolutely amazing.
8: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: एक आदत हमारी बुरी तो है कि हमें ना हर चीज ना बिल्कुल कंप्लीट चाहिए होती है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक, आफरीन है साथ में। और ऐसे ही है ना, हमारे प्लान्स कंप्लीट होने चाहिए, रिलेशनशिप परफेक्ट होने चाहिए, सारे सवालों के आंसर्स मिलने चाहिए, लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड। बट सच बताऊं, कंप्लीटली सॉर्टेड लाइफ शायद सिर्फ एक्सेल शीट में ही अच्छी लगती होगी। रियल लाइफ में कुछ चीज़ें अधूरी रह जाती है ना, शायद वही उसे रियल बनाती है। इसी ख्याल पर आज की शायरी,
1: आफरीन की डायरी से शायरी। शायरी
0: तो अर्ज किया है, कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ बातें अधूरी, कुछ गलतियां अपनी, कुछ यादें जरूरी। कुछ ख्वाब अधूरे, कुछ बातें अधूरी, कुछ गलतियां अपनी, कुछ यादें जरूरी। हर किसी की कहानी में कुछ कमी रह जाती है, इसी अधूरेपन में तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है। हाउ ब्यूटिफुल थॉट, एंड मे बी दैट्स द पॉइंट ना, हर अधूरी चीज को पूरा करना जरूरी नहीं है, कुछ को बस अपनी कहानी का हिस्सा मान लेना भी काफी है, और उसी से हम कितनी सारी चीजें सीख लेते हैं ना। माइक से दिल तक आफरीन है आपके साथ, और मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boulder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello, Qatar. I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

Well, Sean, Vasundhara Das, Loy Shankar Mahadevan ki awaaz mein ye gaana, Where's the party tonight? And you tell me, my friends, where is your party tonight? Very good morning and welcome back. वैसे वेलकम तो कर रही हूँ लेकिन टाटा बाय बाय कहने के लिए, क्योंकि भाई मेरा तो टाइम हो गया है खत्म और जो मुझे लाइक जोरों की भूख लगी है और वेयर्स द पार्टी सुनते ही मुझे अब बस पार्टी तो नहीं लेकिन वीकेंड अब नजर आ रहा है कि हाँ मेरा तो वीकेंड शुरू हो चुका है. बट विद दिस हैविंग सेड दैट, आपका दिन खत्म होना बाकी है लेकिन आपके दिन की तो किक स्टार्ट जो होती है ना अच्छी वाली, वो मैंने यहाँ पर डेफिनेटली कर दी है. वेल हैव अ ग्रेट वीकेंड और पूरी तरह से अपना वीकेंड को ना अपने लोगों के साथ जरूर बिताइएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी का जो बैटरी रीसेट होता है ना वो कहीं और से नहीं बस अपने लोगों से ही आता है. वहीं से आपको खुशी मिलती है और वहीं से आप एकदम एनर्जाइज हो जाओगे अगले हफ्ते के लिए. सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एज वेल, रेस्ट वेल, ईट वेल, स्लीप वेल एंड एंजॉय वेल. माइक से दिल तक आफरीन लेना चाहेगी अलविदा. अगला गाना आपके लिए ये सुनाते हुए जाऊंगी, आज तक गिल, दिव्या कुमार, सचिन सांगवी, जिगर, इतने सारे लोग ये गाने में, स्त्री मूवी का ये गाना और मिर्ची, फुल तड़कता भड़कता गाना दिस मॉर्निंग. टाटा बाय बाय, सायोनारा, सुनते रहेगा मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हेलो, मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल, मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ।
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे।
2: I'm joking, mama.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची वन कतर
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।

0: Indie Top 10
1: Kanika ke saath on Mirchi.
2: Mirchi sun rahe hain aap, bandi ka naam hai RJ Kanika. It's time for the hottest countdown of the week. This is the Gaana Indie Top 10, only show on Mirchi jahan hafte ke top 10 hottest pop gaanon ki ginti hum aapke liye lekar aate hain. Hafte ke top 10 gaanon mein do nayi entries hain is hafte. Hum apna 90s and 2000s ka cassette classic bhi aapke liye play karne wale hain. All this and more at RJ Kanika on Instagram par aakar stay connected with me. Koi gaana batana hai, suggestion hai, bindaas aake hit me up. Shuruaat karti hu is hafte ki with gaana number 10. Banjari the artist ka gaana, gaane ka naam hai Barsaat. दो हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार, दिस वीक ऑन गाना नंबर 10. उसके बाद एक नई नवेली एंट्री, हितेन बादशाह का गाना फीचरिंग शर्वी यादव. गाने का नाम ही है बैंगर. दिस न्यू बादशाह ट्रैक डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बदी का नाम है कनेका. एंजॉय. नंबर 10.

Man. Barrel. Yeah. भाई तेरा बस लगता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: It's your boy. बादशाह की आवाज फीचरिंग शर्वी यादव, हितेन का प्रोडक्शन, गाने का नाम ही है बैंगर. दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. एक गाने को बैंगर से वोकलिस्ट नहीं बल्कि प्रोड्यूसर बनाता है अपनी बीट से. इट्स टाइम टू मीट दिस बैंगर प्रोड्यूसर.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ.
0: Hello, this is the Ghana Indie Top 10. Baddi ka naam hai RJ Kanika. Connect with me Instagram par, follow kare, mera handle is @RJKanika. Koi gana share karna hai, baatein batani hai, bindas aake hit me up. Pichle 6 saal se jitne gaane Badshah ke is show par debut karte hain, jo main aur aap sunna band nahi kar paate hain, un gaano mein ek naam common hota hai. Wo naam hai Hiten ka. हितेन इज द सुपरस्टार प्रोड्यूसर जो बहुत रिपीटेडली बादशाह के साथ काम करने लगे हैं. बट अगर मैं उनका डिस्कोग्राफी देखना शुरू करूं तो इट्स नॉट जस्ट कि वो बादशाह के फेवरेट प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने किंग के साथ, एमसी स्क्वायर, पैराडॉक्स, रफ्तार जैसे आर्टिस्ट के साथ गाने प्रोड्यूस करे हैं. तो फिर सोचने वाली बात ये है दैट हम प्रोड्यूसर पे इतना ध्यान क्यों नहीं देते हैं. बीट तो वही बना रहे हैं. उस पूरे गाने को पैकेज करना इस वे में दैट मैं और आप उसे सुनना बंद ना कर पाए, दैट इज द प्रोड्यूसर इन द हाउस. एंड हितेन डिजर्व्स द बिगेस्ट स्पॉटलाइट. साल 2017 में दैट क्रिंज पॉप सॉन्ग बाय ढिंचैक पूजा, सेल्फी मैंने ले ली आज, वो इतना डाइजेस्टेबल वायरल गाना बना था बिकॉज हितेन ने उस गाने का मिक्स बनाया. वहां से लेके अब तक वो किसी एक लेन में स्टिक नहीं करे. बादशाह का गाना आवारा प्रोड्यूस किया एंड उसके बाद बादशाह की पूरी एल्बम एकता राजा इज बीन प्रोड्यूस्ड बाय हितेन, जिसमें करण औजला के साथ गाने हैं, अरिजीत सिंह एंड बादशाह का सोलमेट. This gorgeous song is produced by Hiten. And what's so amusing about all of this is कि वो किसी भी म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, पंजाब को बिलोंग करते हैं. उन्होंने प्रोडक्शन अपने घर पे वीडियोस देख के हाउ टू मेक बीट्स एक्चुअली सर्च करके सीखना शुरू किया, लोगों को रीच आउट करके फेसबुक पे, प्रॉपर DIY प्रोड्यूसर. पर अपने करियर में वो अपना सबसे बड़ा पिवट पॉइंट ये वाला गाना मानते हैं. साल था 2021, बादशाह ने हितेन को एक इंस्टाग्राम रील भेजी एक वॉइस नोट के साथ कि यार कुछ बीट बनाना इस पे. दिस वायरल ऑडियो बचपन का प्यार जो हर जगह चल रहा था, हितेन ने 30 से 40 मिनट में पूरा ऑडियो बनाया, भेज दिया बादशाह को एंड रेस्ट इज हिस्ट्री. द सॉन्ग ब्लू अप लाइक क्रेजी. सो इन अ वे इसीलिए हितेन कहीं ना कहीं बादशाह को अपना गाइड मानते हैं, मोर देन एन आर्टिस्ट जिनके साथ वो काम करते हैं. बट माई फेवरेट क्वालिटी अबाउट हितेन एज अ प्रोड्यूसर इज दैट ही लेट्स अ सॉन्ग बी, वो गाने को सांस लेने देते हैं. एंड दैट्स व्हाई ही इज द चोजन प्रोड्यूसर फॉर बादशाह, किंग. काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है वो गाना भी इज व्हाट इट साउंड्स लाइक बिकॉज ऑफ इट्स प्रोड्यूसर. गाना संजू राठौड़ का है पर उसके प्रोड्यूसर हैं जी स्पार्क, जिन्होंने गुलाबी साड़ी भी प्रोड्यूस किया था संजू के साथ. हम रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. संजू राठौड़ की आवाज में जी स्पार्क की प्रोडक्शन. गाने का नाम है बैंगल्स. 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. बैंगल्स इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
2: Number 8.

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La vieț va la burka.
1: Mirci, burka. हेलो, गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
1: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
1: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे, यू नो।
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
1: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या ये?
1: आओ मिलो शिलो शालो।
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
1: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
1: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
1: शिलो शालो,
2: शालो
1: कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा
1: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
1: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
1: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
1: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ से बोलेंगे। दस पत्ते तोड़े,
2: तोड़े
1: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े।
1: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
1: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
1: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले
1: तो मिस्टर, बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कोई सुनेगा?
1: सर ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot,
4: yep, yeah.
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC.

लफ्ज कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के, पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया।

0: अरूप खान की आवाज है, गाने का नाम है गुच्ची। ऑल्दो हमारे दिमाग में अलग वीडियो चल रही है, दिस सॉन्ग डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 6। उससे पहले हमने फरक का गाना सुना तारे, 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार दिस वीक ऑन गाना नंबर 7।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
0: हेलो हेलो, स्वागत है आपका, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है आरजे कनिका। इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, फॉलो करना बिल्कुल फ्री है। मेरा हैंडल इज @RJKanika। कोई गाना शेयर करना हो, बिंदास आके हिट मी अप। गाना नंबर 6 पर हमने सुना गुच्ची बाय अरूप खान, जिसको एक्चुअली हम सब ने इंस्टाग्राम से ही डिस्कवर किया है। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस सॉन्ग इज कि गाइस, ये गाना 2020 में आया था, लेकिन 2026 में ओनली बिकॉज ऑफ रवि किशन दिस सॉन्ग फाउंड इट्स मोमेंट। वो एक इवेंट पे स्टेज पर जा रहे थे और वहां जगह नहीं थी, तो एक बहुत ही क्वर्की साइड वॉक करी रवि किशन ने, वो एडिट विद गुच्ची ऑन टॉप ऑफ इट, वो हर जगह वायरल हो चुका है। एंड उस मीम की वजह से एक 6 साल पुराना गाना वापस हमारे काउंटडाउन में आ गया है। और ऐसा होता है, लाइक सोशल मीडिया वंस इन अ वाइल एक गाने को, एक आर्टिस्ट को हमारे ऑर्बिट में लाके खड़ी कर देती है, एंड दैट बिकम्स अ वेरी डिफाइनिंग मोमेंट फॉर एनी आर्टिस्ट। बिकॉज सारा प्रेशर उन पे है, सारी आंखें उनकी तरफ है कि क्या ये वन हिट वंडर रह जाएंगे या ये इसके बाद कुछ करेंगे। एंड एक आर्टिस्ट के लिए बहुत प्रेशर वाला जोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई रियली डोंट थिंक वन हिट वंडर इज अ बैड थिंग टू से। अगर आप उस गाने के रिस्पेक्ट में देखो तो वो गाना इतना अच्छा है कि कोई उसको इग्नोर नहीं कर पाया। बट यस, ऑब्वियसली इट रेजेस क्वेश्चंस कि इसके आगे क्या होगा। आई थिंक बहुत सारे आर्टिस्ट इस सवालों से गुजरे हैं, एंड वन ऑफ द नेम्स व्हिच आई थिंक इज अ पोस्टर बॉय ऑफ इट इज एपी टिल्लो। साल था 2020, ब्राउन मुंडे वाज एवरीवेयर। अचानक उस गाने की वजह से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी, एंड हर किसी का यही सवाल था कि क्या ये वन हिट वंडर है या इसके बाद ये कुछ और बना पाएंगे। एंड फिर जो हुआ, दैट्स फॉर द हिस्ट्री बुक्स, राइट? आई डोंट थिंक एपी ने किसी भी सवाल का जवाब दिया, उन्होंने सिर्फ नए गाने रिलीज किए। इवन इफ ही वॉज बींग कॉल्ड वन हिट वंडर, तो उन्होंने वो उसको अपने फेवर में लिया और दिल नू समर हाई जैसे गाने बैक टू बैक रिलीज करे। एंड एवरी सॉन्ग जस्ट प्रूव दैट ही इज सो इन इट, एंड जनता ने भर भर के प्यार दिया उनके नए गानों को। सो यार, बीइंग कॉल्ड वन हिट वंडर इज नॉट अ बैड थिंग। ऑफ कोर्स द प्रेशर देन बिगिंस कि इसके बाद क्या करना है। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। एपी टिल्लो का हिट मोमेंट अलोंग विद गुरिंदर गिल, शिंदा कालो, जी माइनर, 2020 में आया ये गाना ब्राउन मुंडे, टिल डेट इज लाइक एन एंथम फॉर एवरीवन। ब्राउन मुंडे इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: Mad vibe, mad song, Gurinder Gill, AP Tilna, Shinda Kalo, G Minor ka gana, gaane ka naam hai Brown Munde. This was a beginning of many great things for Punjabi music. जहाँ पे फीलिंग बहुत देसी है पर प्रोडक्शन बहुत इंटरनेशनल था. आई थिंक दैट्स समथिंग आई कैन से अबाउट द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन द काउंटडाउन एज वेल. अनीश सरकार हृदय का गाना, गाने का नाम है उड़ी उड़ी. एक फोक मेलोडी को इतनी ऊबर कूल प्रोडक्शन में पैकेज किया है. पिछले हफ्ते से दो पोजीशन ऊपर जंप करके उड़ी उड़ी इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 5. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 5.

0: Rana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. Number 4.

0: बंजारे की आवाज, उन्हीं के लिरिक्स, उन्हीं की कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है बैरन। जब भी गाना चल रहा होता है मुझे लगता है ये गाना बंद ही ना हुए। सच इज द इफेक्ट ऑफ दिस सॉन्ग। 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार। पिछले हफ्ते से 3 पोजीशन नीचे ड्रॉप हुआ है। दिस वीक ऑन गाना नंबर 4।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनिका। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर, मेरा हैंडल इज @RJKanika। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। पर कुछ गाने ऐसे होते हैं ना जो नए नहीं होते हैं, लेकिन जब हम सुनते हैं तो बहुत फेमिलियर साउंड करते हैं। दैट हैज टू बी अ क्लासिक। इट्स टाइम फॉर व्हाट वी कॉल हमारी कैसेट क्लासिक, जहाँ पर हम 90s एंड 2000s के आइकॉनिक इंडी पॉप गानों को फीचर करते हैं। द सॉन्ग वी फीचर्ड लास्ट वीक वॉज एंड द सॉन्ग वी गोइंग टू फीचर दिस वीक इज गाने का नाम है सानी धापा बाय द वन एंड ओनली कलोनियल कजिन्स। गाना 1996 में आया था बाय द सेल्फ टाइटल्ड डेब्यू एल्बम कॉल्ड कलोनियल कजिन्स। दिस एल्बम वाज सच अ रेजर। दिस वेंट प्लैटिनम, ये चार्ट्स पे रहा एंड कलोनियल कजिन्स इंडी पॉप स्पेस में घर घर का नाम बन गए थे। बट व्हाट्स वेरी इंटरेस्टिंग इज दैट अगर आप इन दोनों आर्टिस्ट को देखें, हरिहरन जी एंड लेस्ली लुइस, ये दोनों म्यूजिक के इतने डिफरेंट स्पेक्ट्रम से आते हैं, दैट मेड कलोनियल कजिन्स सो इंटरेस्टिंग एंड टिल डेट वन ऑफ द मोस्ट फ्रेशेस्ट एक्ट जो हमने पॉप सीन में देखा है। एक तरफ है हरिहरन जी, अ क्लासिकल सिंगर, दूसरी तरफ यू गॉट लेस्ली लुइस हु इज ऑल अबाउट द रॉक एंड रोल। लेस्ली लुइस ने बहुत सारे वेस्टर्न प्रोडक्शन एंड साउंड से इंट्रोड्यूस करवाया एंड हरिहरन जी इज द मोस्ट ग्राउंडेड क्लासिकल वॉइस दैट वी हैड नोन। एंड इन दोनों ने मिलके जब कलोनियल कजिन से सानी धापा किया, एवरीबडी जस्ट सैट एंड आज तक भी आई एम इन ऑ। मैं जितनी बार ये गाना सुनती हूँ इट स्टिल साउंड सो फ्रेश कि बिल्कुल अभी प्रोडक्शन हुआ है इस गाने का। अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। वन थिंग आई एब्सोल्युटली लव अबाउट दिस सॉन्ग इज कि ये एक बॉक्स में नहीं बैठा है, क्लासिकल एंड रॉक के फ्यूजन की जगह है एंड सानी धापा इज अ प्रूफ ऑफ दैट। कलोनियल कजिन्स का 1996 का गाना सानी धापा इज अ कैसेट क्लासिक ऑफ द वीक। बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय।

0: कहने को ये गाना 1996 में आया था, लेकिन आज 2026 में also I can say that it is one of the most experimental pop sounds out there. Hariharan ji and Leslie Lewis sir की आवाज़ में that was Sani Dhapa by Colonial Cousins on our cassette classic this week. At RJ Cunning on Instagram पर on, बताओ मुझे यार 90s 2000s के यही वाले गाने which still makes us feel like इंडी पॉप का गोल्डन एरा तो 90s एंड 2000s में था. Which is your favorite? मुझे आके बताओ. We might feature your song next week. Now back to the countdown. अगले वाले गाने की बारी. मिट्टा रॉर की कॉम्पोजिशन, उन्हीं के लिरिक्स मिट्टा रॉर एंड स्वरा वर्मा की आवाज में. गाने का नाम है शीशा. 23 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. शीशा इज प्लेइंग राइट नेक्स्ट फॉर यू ऑन गाना नंबर 3. यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
1: नंबर 3.

0: Blana Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
4: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
3: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by iPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
7: The Mentalist Suhani Shah live.

0: Indie Top 10
1: Gana ka ke saath on Mirchi.
2: Mirchi par, this is the Gana Indie Top 10. Bandi ka naam hai RJ Kanika. This is the show where we bring to you the hottest pop songs of the week. हफ्ते के टॉप 10 पॉप गानों में दो नई एंट्रीज थी. हमारा 90s 2000s का इंडी पॉप क्लासिक भी हमने आपके लिए प्ले किया. गाना नंबर 10 से गाना नंबर 3 का सफर हम पूरा कर चुके हैं. बिफोर वी मूव ऑन टू द टॉप 2 सॉन्ग्स ऑफ द वीक, एक क्विक रीकैप लेते हैं राइट फ्रॉम द टॉप. बंजारे का बरसात दिस वीक ऑन गाना नंबर 10.
3: प्यारे सा मिलना नहीं, कौन मेरे जैसा चाहेगी.
2: उसके बाद एक नई नवेली एंट्री हुई बादशाह हितेन शर्वी यादव का बैंगर डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 9. संजू राठौड़ का बैंगल्स 13 हफ्तों से गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक वॉज ऑन गाना नंबर 8. कहने तो नहीं चाहिए बट दिस सॉन्ग इज लाइक अ फेवरेट. फरक का तारे 5 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक. तारे वाज ऑन गाना नंबर 7. अरूब खान का गुच्ची हैज मेड अ डेब्यू एंट्री मारी है सीधा ऑन गाना नंबर 6. अनीश सरकार हृदय का उड़ी उड़ी स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग 13 हफ्तों से इस काउंटडाउन पर बरकरार. उड़ी उड़ी दिस वीक वाज ऑन गाना नंबर 5. बंजारे का बैरन 23 हफ्तों से गोइंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 4.
3: मन सांब सांब रखे तेरे झंझरा के जोड़े मेरी गेल.
2: मिट्टा रॉर का शीशा स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग दिस वीक ऑन गाना नंबर 3.
4: देख देख शीशा शर्मंद फिरो सो मैं तो देख दे.
2: It's time for the top 2 songs of the week. And इस बार वाले जो टॉप दोनों गाने हैं आपने एक्सपेक्ट नहीं करे हैं बिकॉज काफी रीशफल हुआ है. पिछले हफ्ते से एक पोजिशन ऊपर जम करके हर्ष नुस्सी का गाना, गाने का नाम है साडी सुन. हर्ष नुस्सी दीप क्लेयर के लिरिक्स सुनी की कॉम्पोजिशन. ये गाना एक पोजिशन ऊपर जम्प मार के दिस वीक इज ऑन गाना नंबर 2. उसके बाद द न्यूमेरो ऊनो सॉन्ग ऑफ द वीक इज अ OTT रिलीज. गाने का नाम है दरमिया, रेखा भारद्वाज राघव कौशिक की आवाज. राघव कौशिक का म्यूजिक. दिस इज फ्रॉम मुसाफिर कैफे. अ वेरी क्यूट लव स्टोरी बट अ इवन क्यूटर सॉन्ग. दरमिया डेब्यूज दिस वीक ऑन गाना नंबर 1. तो ये दोनों गाने बैक टू बैक साडी सुन नंबर 2 पे है, फिर दरमिया नंबर 1 पे. ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है कनिका. एंजॉय.
5: नंबर 2.
6: हाउ चुप

0: Indie Top 10 Kanika ke saath on Mirchi. It's hot.
1: Hello, I'm Mirchi Helpline.
2: Yes, of course, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
1: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
2: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
3: साले को खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1.
3: बॉलीवुड को समझना है तो एक बात मान लीजिए, अब इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जिस फिल्म को इंडस्ट्री सेफ समझती है, ऑडियंस उसे इग्नोर कर देती है, और जिस फिल्म को देखकर पहला रिएक्शन आता है कि भाई ये क्या बनाई है, कभी कभी वही थिएटर्स में हंगामा कर देती है। Whether it's a Dhurandhar 2, Awarapan 2, Toxic या फिर हैवान, and then of course you got the Dhamals, the Cocktails and the Welcome to the Jungles। मतलब ऑडियंस एक अजीब सी डिमांड कर रही है, सरप्राइज भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए, बस एक चीज नहीं चाहिए, प्रिडिक्टेबिलिटी। शायद बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग बात आज यही है। इंडस्ट्री फ्यूचर की तरफ भाग रही है, लेकिन ऑडियंस कभी कभी उसे पास्ट की तरफ खींच लाती है। जैसे आज शान की आवाज, सैफ अली खान लगभग 2 दशक बाद, और हैवान से ही इस बार का काउंटडाउन होता है किक स्टार्ट। दिस इज गाना नंबर 20, मेरे हीरो है वो।
4: लेके जन्म पहला पहला कदम, जब चलते हैं हम उंगली थामे कोई।
5: लिख रहे हो ना?
4: तुम भी गाओ।

जब कोई गाना खत्म होता है हम तुरंत उस टाइम पर कुछ बोलते नहीं, बस 2-3 सेकंड्स की वो खामोशी होती है। ना लिरिक्स की कोई एक लाइन दिमाग में अटकी होती है, ना म्यूजिक का कोई पर्टिकुलर पीस, बस आवाज अंदर कहीं रुक गई होती है। तो फिर आओ, मेरे लिए उन्हीं गानों में से एक है। और शायद म्यूजिक की सबसे खूबसूरत बात भी यही है, हर कनेक्शन का एक्सप्लेनेशन नहीं होता। इसलिए आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, म्यूजिक हटाने वाला हूं, प्रोडक्शन हटाने वाला हूं, सिर्फ आवाज आप तक पहुंचाना चाहता हूं।

बस अभी जो सुना उसमें अरेंजमेंट नहीं है, फिर भी आवाज पहचान में आ जाती है। आवाज है अरमान मलिक की। एक वक्त था जब रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए बॉलीवुड की सबसे इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल यंग आवाजों में अरमान का नाम आता था, और फिर उन्होंने इंडिपेंडेंट म्यूजिक में अपनी अलग दुनिया बनाई। और शायद इसलिए नंबर 18 पर आता हुआ ये ब्रांड न्यू गाना सिर्फ एक नई एंट्री नहीं लगती, कभी कभी कमबैक अनाउंसमेंट से नहीं होता, बस आवाज दोबारा सुनाई देती है और आप खुद समझ जाते हैं। प्रेम कीटाणु से अरमान मलिक इज बैक विद अ सॉन्ग कॉल्ड कहो तो, एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 18।

0: Mirchi.
1: Escabana, puscabana, sacabana.
2: Yabala.
1: Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello?
4: Hello?
1: A burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello?
4: Hello? आपने
3: कौन बोल रहा है, कहाँ घुस गए यार?
4: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए?
3: हाँ हाँ बोला था, हुआ क्या है कुछ तो बताओ।
4: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार, आपके टॉयलेट पे आपने कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
3: कब आया था, कब घुसा अंदर?
4: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
3: कहाँ से आया? नहीं हो गया है,
4: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
3: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
4: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
3: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
4: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
3: के सीवर में मरा रहा है तू?
4: गाली तो मत दो।
3: हेलो
4: हेलो,
3: फिर फोन कर दिया तूने?
4: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
3: क्या बोलो?
4: कुकड़ू को
5: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
4: गाली तो मत दो।
3: हेलो
4: हेलो,
3: फिर फोन कर दिया तूने?
4: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
3: क्या बोलो?
4: कुकड़ू को
5: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और

0: एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
1: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah live.

धुरंधर 2 का वो गाना जो हमारे जहन से हटने का नाम नहीं लेता, बिकॉज कुछ गाने फिल्म के सीन्स को यादगार बना देते हैं, एंड आरी आरी और नंबर 15 डिड जस्ट दैट। लेकिन कभी कभी कोई गाना फिल्म से निकलकर आपकी जिंदगी में जगह बना लेता है। आवारापन 2 का एक ब्रांड न्यू गाना पिया घर आया मेरे लिए एग्जैक्टली वैसा ही है। अखिल सचदेव की आवाज, उन्हीं के शब्द, उन्हीं का म्यूजिक, सब मिलकर इस गाने को सिर्फ एल्बम का एक और ट्रैक नहीं रहने देते। तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता, दे वर ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया, लेकिन पिया घर आया कुछ और ही है। ये वो गाना है जो आप अपने साथ घर ले जाते हैं, और किसी गाने की असली कसौटी थिएटर्स में नहीं होती, कभी कभी वो होती है पहाड़ों पर एक लंबी ड्राइव के वक्त, बारिश के वक्त, तब ठंडी हवा चलती है और अचानक आप खुद को गाते हुए पाते हैं बिना ये सोचे कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। मैंने इस गाने को बार बार लूप पर सुना और मुझे लगता है

कुछ साल बाद जब हम इस एल्बम को याद करेंगे, आवारापन 2 को याद करेंगे, पिया घर आया उन ट्रैक्स में होगा जो वक्त के साथ और खूबसूरत बन जाएगा। बाय द वे, आवारापन 2 का म्यूजिक एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है, वो सिर्फ पुरानी याद को रिपीट नहीं कर रहा, उसके साथ नई यादें भी बना रहा है। डेब्यू हो रहा है अखिल सचदेव की इस मुकम्मल कॉम्पोजिशन का। दिस इज पिया घर आया फ्रॉम आवारापन 2। नंबर 14।

सजाया। ओ, ओ, ओ, ओ मौज लैन लगा मेरी अखियां दा नूर मेरा पिया घर आया। नंबर 13

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो. Yeah.

0: Köpek.
1: Aman sen. Mamı köpek çoğum.
0: Ciddi ol.

धुरंधर 2 का वो गाना जो हमारे जहन से हटने का नाम नहीं लेता, बिकॉज कुछ गाने फिल्म के सीन्स को यादगार बना देते हैं, एंड आरी आरी और नंबर 15 डिड जस्ट दैट। लेकिन कभी कभी कोई गाना फिल्म से निकलकर आपकी जिंदगी में जगह बना लेता है। आवारापन 2 का एक ब्रांड न्यू गाना पिया घर आया मेरे लिए एग्जैक्टली वैसा ही है। अखिल सचदेव की आवाज, उन्हीं के शब्द, उन्हीं का म्यूजिक सब मिलकर इस गाने को सिर्फ एल्बम का एक और ट्रैक नहीं रहने देते। तो फिर आओ और तेरा मेरा रिश्ता, दे वर ऑल अबाउट नॉस्टैल्जिया। लेकिन पिया घर आया कुछ और ही है। ये वो गाना है जो आप अपने साथ घर ले जाते हैं, और किसी गाने की असली कसौटी थिएटर्स में नहीं होती, कभी कभी वो होती है पहाड़ों पर एक लंबी ड्राइव के वक्त, बारिश के वक्त, तब ठंडी हवा चलती है और अचानक आप खुद को गाते हुए पाते हैं बिना ये सोचे कि कोई सुन भी रहा है या नहीं। मैंने इस गाने को बार बार लूप पर सुना और मुझे लगता है कुछ साल बाद जब हम इस एल्बम को याद करेंगे, आवारापन 2 को याद करेंगे, पिया घर आया उन ट्रैक्स में होगा जो वक्त के साथ और खूबसूरत बन जाएगा। By the way, आवारापन 2 का म्यूजिक एक इंटरेस्टिंग चीज कर रहा है। वो सिर्फ पुरानी याद को रिपीट नहीं कर रहा, उसके साथ नई यादें भी बना रहा है। डेब्यू हो रहा है अखिल सचदेव की इस मुकम्मल कॉम्पोजिशन का। दिस इज पिया घर आया फ्रॉम आवारापन 2। नंबर 14।

0: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
0: Only on Mirchi. It's hot. Number 12.

0: शरारत इस हफ्ते नंबर 12 पर है, लेकिन आज बात फिल्म के इंटेलिजेंस की नहीं, एक और काइंड ऑफ इंटेलिजेंस की। देखिए, अगर आपने सोशल मीडिया पे देखा है तो काफी सारे एक्टर्स को उनकी जनरल नॉलेज पे ट्रोल किया जाता है। हम किसी एक्टर को पकड़ते हैं, 2-3 सवाल पूछते हैं और जब जवाब नहीं मिलता तो तुरंत हम वर्डिक्ट दे देते हैं, अरे इसको तो इतना भी नहीं पता। लेकिन एक एक्टर है जिन्होंने इसके लिए एक मुंह तोड़ जवाब दिया है और वो एक्टर है कुणाल खेमू, और उन्होंने इस थिंकिंग को एक सिंपल बात से नकार दिया है।
1: हर चीज में हमको एक्सपर्ट क्यों समझ रहा है? क्यों मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पहली पिक्चर किसने बनाई थी, आपको नहीं पता होगा, तो मुझे क्यों पता होना चाहिए कि हर देश का प्रधानमंत्री कौन है या कौन सा बिल कब पास हुआ था, ये जंग हमने कब जीती थी? नहीं पता होगा ना मुझे, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है। मेरा इंटरेस्ट जूतों में, तो मैं अगर आपको जर्नलिस्ट को पूछूं कि आपको पता है एयर जॉर्डन 1 पहला कब आया था और उसको नहीं पता होगा, मैं फुद्दू, तेरे को कुछ नहीं आता, ऐसे थोड़ी होता है। अबे मेरी जिंदगी में जो रेलेवेंट है वो मुझे पता होगा, तेरे जो है तुझे पता होगा।
0: आई गेट व्हाट कुणाल इज सेइंग, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक दुनिया होती है यार। किसी को पॉलिटिक्स याद रहती है तो किसी को सिनेमा, और किसी को जूतों के बारे में वो डिटेल्स पता होती हैं जो हम गूगल करके भी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप कुणाल के करियर को जरूर गूगल कीजिएगा, क्योंकि उनका करियर बहुत इंटरेस्टिंग है। गोलमाल और लूट केस की कॉमेडी से लेकर उनकी खुद की डायरेक्टोरियल डेब्यू मडगांव एक्सप्रेस तक, एंड देन यू ऑल्सो गॉट द डार्कनेस ऑफ मलम। एक एक्टर को लिमिट करना ऑडियंस का शॉर्टकट है, लेकिन अच्छा एक्टर वो होता है जो खुद इस लिमिटेशन को ही तोड़ दे। इस हफ्ते धमाल 4 का गाना साड़ी नंबर 11 पर है, लेकिन क्योंकि हमने मलंग की बात की थी तो उसमें कुणाल के डार्क साइड को मोहित सूरी ने एक अलग ही टेक्सचर दिया था, माइकल रॉड्रिग्स। उस फिल्म की एक धुन जो बनाई है मिथुन ने और उसे गाया है अरिजीत सिंह ने, और इन दोनों के लिए दिस इज लाइक दाल चावल फॉर लाइफ। दिस इस चल घर चलें।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
2: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन बताइए।
1: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती। क्या करूं?
2: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होठों पे अच्छी लगती है।
3: खोपड़ी तोड़,

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Only on Mirchi. It's hot. Number 10.

कभी किसी गाने को सुन के बस इतना कहा है यार कितना फ्रेश साउंड करता है। लेकिन ये जो वर्ड है फ्रेश, ये आखिर होता क्या है? इसे नया साउंड या फिर एक अजीब सा इंस्ट्रूमेंट या एक ऐसा हुक जो पहले कभी ना सुना हो? शायद फ्रेशनेस नॉवेल्टी नहीं है। फ्रेशनेस वो फीलिंग है जब गाना खत्म होता है और दिमाग तुरंत किसी और गाने का रेफरेंस ढूंढने नहीं लगता, बस अच्छा लगता है। अमित त्रिवेदी का ये गाना रातों में आना मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही है। इट्स फील गुड, कुमार भाई के अल्फाज, अमित की खुद की ब्रीजी आवाज और इस फिल्म वाइब के विजुअल्स। गाना कुछ प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहा है, ना ट्रेंड्स के पीछे भाग रहा है, ना शोर करता है, बस अच्छा लगता है। और कभी कभी गाने का काम इतना ही होना चाहिए, दिल को हल्का कर देना। कुणाल खेमू की आने वाली फिल्म वाइब का ये गाना रातों में आना नंबर 10 पर डेब्यू कर रहा है। और फ्रेशनेस का एक और मजा है, हर नई आवाज अपना पहला इंप्रेशन जरूर लेकर आती है। इस हफ्ते आवारापन 2 एल्बम में जिन्होंने डेब्यू किया, सुबोध शर्मा, ही इज अप नेक्स्ट। मिथुन का म्यूजिक, दिस इज वेजनोन, दिस टाइम ऑन नंबर 9।

0: Surain ke saath, only on Mirchi. It's hot.
1: Well, my friends, before we go on to the next track of Mirchi Top 20, it is time for Gold Update.
2: Gold Update.
1: Well, देखो आज का गोल्ड अपडेट ये कहता है दैट अलफरदान का 1 ग्राम PMP यानी पैम्प गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 591 कतरी रियाल, पैम्प 5 ग्राम लेडी फॉर्चुना बार इज फॉर 2772 कतरी रियाल, पैम्प 10 ग्राम बार इज फॉर 5475 कतरी रियाल, पैम्प 1 ounce बार इज फॉर 16925 कतरी रियाल एंड पैम्प 10 तोला गोल्ड बार इज फॉर 62857 कतरी रियाल। ये थे आज के गोल्ड रेट, सोना लेना हो या ना लेना हो लेकिन भाव पर नजर जरूर रहनी चाहिए। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: स्टे अहेड ऑफ टुडेज गोल्ड रेट्स विद अलफरदान एक्सचेंज, पैम्प्स ऑफिशियल एजेंट इन कतर। बाय ऑथेंटिक स्विस मेड 24 कैरेट पैम्प गोल्ड बार्स
4: एंड अर्न कतर एयरवेज एवियोस टुडे।
3: विजिट आवर ब्रांचेस और डाउनलोड द

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello?
3: Hello? Hello?
2: भैया आवाज़ साफ नहीं आ रही, कम आ रही है आवाज़।
3: भाई साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी।
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा।
3: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दी है? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब, ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: तू चोरी करने के लिए गया?
3: तुमने पहले क्यों नहीं बताया? यहाँ पे
2: मशीन से है कौन? तू खुद चोरी कर रहा है, मुझे फंसवाएगा।
3: मेरी बात सुन,
2: तू मुझे मरवाएगा। मुझे फोन कर दिया
3: बहन।
2: हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर सर सर सर, मेरी बात सुनिए। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था। आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं। आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे हैं भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मिल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मिल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
7: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
8: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT's Nunu. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

0: तबाही, टाइटल बिल्कुल सही है। लेकिन बॉलीवुड में आजकल एक और चीज की भी काफी तबाही है, एक्टिंग और स्टारडम के बीच का फर्क। क्योंकि स्टार बनना अब मुश्किल नहीं रहा, स्क्रीन पर दिखना भी मुश्किल नहीं रहा, लेकिन किसी एक्टर को देखने के लिए टिकट खरीदने का मन करना वो अलग बात है। और करीना कपूर को दायरा में देखने का मन इसलिए होता है, यू रिमेम्बर चमेली, यू रिमेम्बर युवा, यू रिमेम्बर जब वी मेट। और हाँ, देयर वर सम ओवर द टॉप परफॉर्मेंसेस इन मैं प्रेम की दीवानी हूँ एंड यादें, बट करियर का इंटरेस्टिंग पार्ट ये नहीं होता कि एक्टर फिल्में कितनी करता है, इंटरेस्टिंग पार्ट ये होता है कि वक्त के साथ उनकी एक्टिंग किस डायरेक्शन में जाती है। करीना के केस में मुझे लगता है कि वो अब परफॉर्मेंस को दिखाती कम है, उसे जीती ज्यादा है, और उनकी एक बात सुनना काफी जरूरी है।
1: मैंने हमेशा कहा है कि एक्टिंग मेरी रगों में दौड़ रहा है, मैं एक्टिंग के सिवा तो मैं मुझे कुछ आता ही नहीं है। आई हैव जस्ट बीन बोर्न, एंड ये नहीं है कि बिकॉज मैं इस फैमिली से हूँ, आई थिंक मैं इस फैमिली से अलग हूँ, बिकॉज एक्चुअली मैं पूरी इन्वॉल्व हूँ एक्टिंग में। बाकी फैमिली प्रोड्यूस करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, देयर आर सो मेनी डिफरेंट माय अंकल्स आंट्स एवरीवन, बट मुझे एक्टिंग का इतना शौक है कि आई फील मेरे एक्टिंग का कोई दायरा नहीं है।
0: बस यार, यही फर्क है। स्टार पावर तब नहीं होता जब हर जगह आपका चेहरा दिखे, स्टार पावर तब होता है जब आपका नाम सुन के ऑडियंस सोचे यार इस फिल्म को तो देखना बनता है। मेघना गुलजार की दायरा मेरी वॉच लिस्ट में है, राघव जुयाल की फिल्म भाई तेरा स्टार है का गाना आंखों से तूने 2.0 फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली, लेकिन कभी कभी फिल्म खत्म हो जाती है, गाना रह जाता है, जस्ट लाइक दिस।

क्या वो मोहब्बत जिसका हिसाब लग जाए, बोले वो तो लगे के रबा बच जाए, लड़ मरेंगे लोग आग लग जाए, चेहरे से तेरे जो नकाब हट जाए।

वो फराज की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

लगे। देखो अब जो कि मैं आई हूँ तो आपके फायदे की बात ही करके जाऊंगी। वेलकम बैक, आप सुन रहे हो सिंपली आफरीन को राइट हियर ऑन 89.6 मिर्ची 1 एंड इट्स टाइम कि थोड़ा सा एक्सचेंज रेट पर नजर डाल दे। वेल, आज का एक्सचेंज रेट ये कहता है दैट एक कतरी रियाल के बदले मिल रहे हैं इंडियन रुपीज 26.11, वहीं जनाब पाकिस्तानी रुपीज इज एट 76.09, whereas बांग्लादेशी टाका इज एट 33.76, श्रीलंकन रुपीज की अगर बात करें तो इट इज एट 90.15 एंड नेपाली रुपीज इज एट 41.58। ये थे आज के एक्सचेंज रेट, घर भेजे पैसे, ढेरों सारी खुशियां एंड खुशियों का नंबर वन फॉर्मूला 89.6 पर माइक से दिल तक आफरीन के साथ। इट्स हॉट।

0: कुछ फ्रेंचाइजेस को रीबूट करने की जरूरत होती है और कुछ को अपना असली चेहरा याद दिलाने की। There's a film called Race, जिसे आप नहीं भूले और मैं भी नहीं भूला, लेकिन रेस शायद उस दूसरी कैटेगरी में आती है, क्योंकि पहली दो फिल्म्स में गाड़ियां तेज थी, लोग उससे भी ज्यादा तेज थे, लेकिन असली मजा स्पीड का नहीं था, मजा था इंफॉर्मेशन का। आपको कुछ पता है और कैरेक्टर को कुछ और ही पता है, और हर 10 मिनट में फिल्म आपको सडनली बताती थी कि जो आप समझ रहे थे वो बिल्कुल गलत था। एंड देन आई सलमान खान की रेस 3। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ डायरेक्शन या कास्टिंग की नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि रेस का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो कहीं रास्ते में ही छूट गया, एंड दैट वाज ऑडियंस को डाउट में रखना। अब रेस 4 की बात हो रही है, रीबूट की बात हो रही है, और कास्टिंग पॉसिबिलिटीज काफी इंटरेस्टिंग है। देयर कुड बी आमिर खान, देयर कुड बी टाइगर श्रॉफ, देयर कुड बी सिद्धार्थ मल्होत्रा, विच ऑल्सो मीन्स कि स्केल हो सकता है, एक्शन हो सकता है, बड़े स्टार्स हो सकते हैं। लेकिन असली सवाल अब भी एक ही है, क्या ये रेस होगी या रेस के नाम से एक और एक्शन फिल्म होगी? क्योंकि रेस का मैजिक तभी वापस आएगा जब फिल्म खत्म होने के बाद आप भी सोचेंगे कौन किस पर भारी पड़ा। वेल, लेट मी लीव यू विद दैट थॉट एंड ऑल्सो लीव यू विद माई स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, विच हैपेंस टू बी फ्रॉम द फिल्म दैट वी टॉकिंग अबाउट, बेनी दयाल और शालमली खोलगड़े की आवाज में। दिस इज लत लग गई,
1: स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
4: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की ज़रूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
3: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 2.

महीनों से जिस गाने ने इस काउंटडाउन पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, आज उसके सामने वक्त ने एक बार फिर एक नया फैसला लिखा है। कहरा हुआ इज ऑन नंबर टू। लेकिन नंबर वन की कहानी सिर्फ एक चार्ट पोजीशन की नहीं है यार, एक पुराना गाना वापस आता है और हमें लगता है कि हम गाना सुन रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम अपनी पुरानी जिंदगी सुन रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता उन्हीं गानों में से 19 साल पहले पहली बार सुना था, लेकिन फिर हम बदले, शहर बदले, लोग बदले, जिंदगी ने अपना साउंड ट्रैक बदला, लेकिन वो धुन कहीं नहीं गई। और जब आवारापन 2 ने उसे दोबारा हमारे सामने रखा तो हमने सिर्फ एक पुराना गाना नहीं सुना, हमने देखा कि उस गाने के अंदर हमारा कौन सा वर्जन अभी भी दबा हुआ था, अभी भी जिंदा था। तेरा मेरा रिश्ता ने आवारापन को सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं दिया, उसने फिल्म को एक मेमोरी दी है। और आज वही मेमोरी महीनों पुराने नंबर वन सॉन्ग गहरा हुआ को उसकी जगह से उतार रहा है। इस हफ्ते का नंबर वन सॉन्ग तेरा मेरा रिश्ता कुछ धुने वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बस हम उनमें खुद का एक नया हिस्सा ढूंढ लेते हैं।

कुछ गाने हम चूज करते हैं और कुछ गाने पता नहीं कब हमें चूज कर लेते हैं, फिर वो किसी सफर का हिस्सा बन जाते हैं, किसी याद का, किसी ऐसे वक्त का जिसे हम दोबारा जीना भी नहीं चाहते और पूरी तरह भूलना भी नहीं चाहते। शायद इसलिए हम हर हफ्ते यहां लौटते हैं। That's it for this episode of the Mirchi Top 20. Until the next time we meet, this is Suren, over and out. Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot. Bula.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है। रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरे बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।
2: मिर्ची घड़ी में बज रहे हैं 10। आप सुन रहे हैं मिर्ची 101.3।

0: डांस वाला
1: भाई डेब्यू हो तो ऐसी
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: वेल मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप और मैं जिस फिल्म की बात कर रही हूँ ना वो शॉर्ट फिल्म कैटेगरीज में आती है और ये फिल्म सिलेक्ट हुई है फॉर 10 फिल्म फेस्टिवल्स अक्रॉस 4 डिफरेंट कंट्रीज और इसी फिल्म के साथ एक्टर सयानी गुप्ता ने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। इसका नाम है आसमानी और ये शॉर्ट फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में ट्रैवल कर रही है। 2 महीने के टाइम पीरियड में 10 फिल्म फेस्टिवल्स टच करेगी विच इज हैपनिंग अक्रॉस US, कनाडा, जापान एंड इंडिया। अगर कहानी के बैकड्रॉप की बात करें तो एक हार्ट वार्मिंग बॉन्ड दिखाया गया है बिटवीन अ स्पिरिटेड ग्रैंड मदर एंड हर ग्रैंड डॉटर और इन दोनों की कहानी चल रही है एक पाउडर ब्लू कलर की कार में विच डेफिनेटली इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर जर्नी। इस फिल्म के साथ ही एक्टर सयानी गुप्ता ने एज अ डायरेक्टर लव लॉस एंड फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर किया है थ्रू द रिलेशनशिप ऑफ अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड डॉटर। इनफैक्ट उन्होंने तो एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि भाई दिस इज इंस्पायर्ड समवेयर डाउन द लाइन फ्रॉम हर रिलेशनशिप विद हर ग्रैंड मदर एंड आई कैन जस्ट इमेजिन कि ये कितना होलसम होगा देखने में। अगर आपको फिल्म का ओवरव्यू चाहिए तो ट्रेलर अवेलेबल है, डू गो चेक इट आउट। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ अगर किसी भी तरीके से मौका मिले ऐसी फिल्मों को देखने का देन इट्स हाई टाइम दैट वी एज ऑडियंस सपोर्ट सच क्राफ्ट। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iska bana, uska bana, saka bana. Ya bana. Burga, burga. Na vijet bala burga.
1: Mirci, burga. हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे, जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूं।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ू?
1: कह रहा मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलू?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
6: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah, live.

0: in association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Strawberry Banana Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good. Pizza partner Papa John's. Qatar, are you ready for the new pan pizza from Papa John's? Crispy garlic parmesan crust, Italian seasoning, 6 cheese blend and cheese edge to edge. The new standard of pan in Qatar at Papa John's. Order now.
1: Healthcare partner Kim's Health Medical Center, a multi-speciality medical center located in Al Wakra, Al Meshaf and Barwa City. Kim's Health. Because aap deserve karte hain best care.
2: Restaurant partner Absolute Barbecue. From savory to sweet, enjoy an unlimited buffet at Absolute Barbecues. Sunday to Tuesday only. Lunch for just QAR 54 and dinner for only QAR 74. Visit Absolute Barbecues.
3: Refreshment partner Baladna. School's back. Time to power up.
4: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
5: Baladna.
4: Taste that Qatar loves.
0: Authentic fashion partner Ivy. Shop 200,000 plus styles from the world's most loved brands on Ivy. With virtual try-on, AI shopping assistant and 90-minute delivery.
2: Partnered by Homes R Us. Super sale. 20% to 50% off across the store till 30th September 2026. Shop in store or online at homesrus.qa and Daiso Japan. Your one-stop back-to-school shop.
0: Transportation partner Al Mufta. Rent a car.
2: Printing and advertising partner Brand Arts. Print, signage and events. Your trusted partner in creating impactful brands and unforgettable events.
6: Visual media partner Rehab Media.
2: Production partner Symphony.
7: दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो. इस इंसान को तो डांस करता देखना चाहती हूँ मैं. मैं विजय वर्मा की बात कर रही हूँ यार, जो अपना डांसिंग साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं विद हिज अपकमिंग फिल्म एंटनी, विच इज गोइंग टू बी एन एक्शन थ्रिलर. मूवी में विजय वर्मा के अलावा सनी देओल भी नजर आएंगे और इन दोनों का फिल्म में फेस ऑफ होगा. आई लाइक इट. हैवान 2 घंटे 44 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली है. सीबीएफसी ने यूए 16 प्लस सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को पास कर दिया है. ऑल्दो फिल्म के सेकंड हाफ के कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स हटाए गए हैं. एंड नाउ द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 11th of September. बर्थडे पे नहीं आएगी टीजर, आएगा टीजर होता है श्रुति. अरे क्या करे, बिहारी पना नहीं जाता है ना मेरे अंदर से. एनीवे, सो मैं बात कर रही हूँ अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के बारे में, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे. सो द अपडेट वॉज की इस फिल्म का टीजर 28th of September, दैट इज रणबीर कपूर के बर्थडे पे आएगा. बट क्योंकि इस फिल्म का शूट ही हाल फिलहाल खत्म हुआ है, इसलिए अब डिसाइड किया जा रहा है कि भाई दिवाली पे रिलीज हो रही है रणबीर कपूर की एक और मच अवेटेड फिल्म रामायण के पार्ट 1 के साथ लव एंड वॉर के टीजर को अटैच किया जाएगा. बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: खेलूं मगर प्यार से।
2: श्रुति श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। किसी के दिल या जज्बात से खेलने की बात नहीं, मैं तो अपनी मिर्ची फिल्म से गेम खेलने की बात कर रही हूँ। बाबू शाय हेलो जी हाय। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर डीएम करना होता है, फिर मैं कॉल करके आपके साथ इस गेम की शुरुआत करती हूँ।

0: तो आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है मनोज जी।
1: हाय श्रुति, हाउ आर यू?
0: मैं बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं?
1: फर्स्ट क्लास एकदम रहे।
0: तो क्या आज आप हमारे फिल्मची बनना चाहते हैं?
1: अरे मेरा नंबर आ गया क्या? Absolutely, why not?
0: All right, तैयार हैं आप?
1: जी।
0: रवीना टंडन पीली साड़ी में बारिश वाला डांस किस फिल्म में करती हैं?
1: मोहरा। मोहरा।
0: Yes, it is. मोहरा में तू चीज बड़ी है मस्त मस्त कौन करता है?
1: अक्षय कुमार।
0: अक्षय कुमार की फिल्म जिसमें उनको चाइना के एक वॉरियर का री इंकारनेशन समझा जाता है।
1: चांदनी चौक टू चाइना।
0: क्या बात, चांदनी चौक टू चाइना में जुड़वा कैरेक्टर किसका है?
1: दीपिका पादुकोण।
0: दीपिका पादुकोण की फिल्म जिसमें वो अपने ऑनर के लिए खुद को जौहर कर देती हैं?
1: पद्मावत।
0: पद्मावत में राजपूत राजा कौन है?
1: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें वो एक अनलकी आर्किटेक्ट हैं जो फिल्म की हीरोइन को अपना लकी चार्म समझते हैं?
1: किस्मत कनेक्शन।
0: यस, किस्मत कनेक्शन की फीमेल लीड कौन है?
1: जो कहानी की एक्ट्रेस है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: विद्या बालन।
0: विद्या बालन की फिल्म जिसमें वो अमिताभ बच्चन की मम्मी बनी है?
1: पा।
0: यस, पा में असली पापा कौन है?
1: अभिषेक बच्चन।
0: अभिषेक बच्चन की फिल्म जिसमें पेटीकोट बाबा कौवा बिरयानी खाते हैं?
1: रन।
0: यस, रन की फीमेल लीड कौन है?
1: रन की फीमेल लीड ये तो है।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट आपने बहुत मस्त गेम खेला है।
1: अरे थैंक यू सो मच, मेरे को लग रहा था मैं टाइम नहीं पहुंच पाऊंगा,
0: बट आपकी इस मेहनत से ये गेम काफी अच्छे लेवल पे पहुंच गया है। इसी के साथ मैं आपको बनाना चाहूंगी आज के हमारे पहले
2: मिर्ची फिल्मची।
0: बाकी इस गेम को अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल। मिर्ची श्रुति के इंस्टाग्राम पे अपना नंबर डीएम कीजिए एंड रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: में शी स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
0: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, मैं तो मिर्ची फिल्म की गेम की बात कर रही हूँ। एनीवे, सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल मिर्ची श्रुति पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके इस गेम की शुरुआत करती हूँ जो आज मैंने मनोज जी के साथ की। बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे हैं संदीप जी। हेलो, कैसे हैं सर?
2: मैं बढ़िया, आप कैसे?
0: मैं बिल्कुल बढ़िया। क्या तैयार हैं गेम खेलने के लिए?
2: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो आपके पहले इस गेम की शुरुआत मनोज जी ने की, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, वो जिस सवाल पे अटके हैं उसके आगे से मैं ये गेम आपके साथ खेल रही हूँ। सो द क्वेश्चन वॉज, फिल्म रन की फीमेल लीड कौन है?
2: भूमिका चावला।
0: भूमिका चावला की फिल्म जिसमें उनसे हीरो को ऑब्सेसिव प्यार हो जाता है?
2: तेरे नाम।
0: तेरे नाम में राधे कौन है?
2: सलमान खान।
0: सलमान खान की फिल्म जिसमें वो टांगों के बीच टावल डाल के डांस करते हैं?
2: ये मुझे बहुत पसंद है, मुझसे शादी करोगी।
0: यस, मुझसे शादी करोगी में सलमान को किससे शादी करनी है?
2: प्रियंका चोपड़ा।
0: प्रियंका चोपड़ा की फिल्म जिसमें वो मॉडल बनी है?
2: फैशन।
0: फैशन में इवी कौन करता है?
2: कंगना।
0: यस इट इज कंगना रनौत की फिल्म जिसमें उनका पति अदरक के जैसे हर जगह से बढ़ता जा रहा है?
2: तनु एट्स मनु रिटर्न्स
0: में उनका पति कौन है?
2: आर माधवन
0: की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है?
2: थ्री इडियट्स
0: में प्रिंसिपल की बेटी कौन है?
2: करीना कपूर।
0: करीना कपूर की फिल्म जिसमें वो अपनी फेवरेट है? तो इसी बात पे मजे को चार गुना करते हैं विद दिस टैग
1: मिर्ची फिल्म ची।
0: नहीं नहीं नहीं, आपको फोमो में जाने की जरूरत नहीं है यार, बस मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर डीएम कीजिए। रेस्ट आई विल टेक केयर ऑफ, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट। दुनिया

0: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
3: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ गाना। रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों ना?

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: यार मूड बड़ा खराब है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: एंड बाबू मोशाय, अगर आप भी एग्जैक्टली ऐसा ही फील कर रहे हो, आई मीन आपका भी मूड खराब चल रहा है, तो हेलो वरी नॉट। आज पांच का पंच की लिस्ट जो लेकर आई हूँ ना, उसमें कुछ अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की बातें होने वाली है। सो अपनी वॉच लिस्ट तैयार रखिए, उसमें ऐड करनी पड़ेंगी आपको ये फिल्में अपना मूड ठीक करने के लिए। तो सबसे पहले लिस्ट में लेट्स टॉक अबाउट द फिल्म दूल्हे राजा, जो 1998 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय हरमेश मल्होत्रा। एंड दिस इज अ क्लासिक कॉमेडी स्टारिंग गोविंदा, कादिर खान, रवीना टंडन। बाकी फिल्म जो है वो सेट है अराउंड द राइवलरी बिटवीन अ होटल ओनर यानी के सिंघानिया प्लेड बाय कादिर खान एंड एक स्ट्रीट स्मार्ट फूड वेंडर, ऑफ कोर्स द ढाबे वाला राजा प्लेड बाय गोविंदा। सो फिल्म के डायलॉग्स हो या फिर इस मूवी के कॉमिक सिचुएशंस या फिर इस मूवी के गाने, मतलब कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली, अंखियों से गोली मार रहे, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। भाई साहब, आज भी जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं ये फिल्म जरूर से जरूर देखती हूँ। सो या यू कैन अपडेट योर वॉच लिस्ट नाउ। बाकी और भी ऐसी चार अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट ऑल ऑफ दैट इन अ व्हाइल। टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabala, puskabala, sakabala. Rambala. Burka, burka. La fiesta la burka.
0: Mirchi, burka.
2: Hello.
3: Good evening, Mr. Srivastav. मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से. How are you?
2: Thank you.
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है.
2: I know, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा.
3: हाँ. नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था. अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें. पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे. यू नो,
2: परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो. आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए. आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे.
2: मतलब गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: मतलब पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो. एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है. आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए. राइट, देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी. राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह.
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो,
2: कच्चा धागा
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस
2: पत्ते तोड़े,
3: एक
2: पत्ता कच्चा.
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े.
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े.
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा.
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा.
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू.
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को, मिस्टर श्रीवास्तव बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है.
2: यार ये कोई सुनेगा
3: सर? ये सर ये सब सुन चुके हैं. अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग.
6: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The mentalist Suhani Shah.

0: I can call them my best friends, huh?
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: Well, बाबू मोशा है, जब मेरा मूड खराब होता है तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड या फिर अपनी माँ, who is the ultimate best friend of my life, मैं इन दोनों लोगों को कॉल करती हूँ. बट अगर ये नहीं हुआ, देन ऑफ कोर्स अपना मूड ठीक करने के लिए आई स्विच टू सम अंडर रेटेड

जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2011, डायरेक्टेड बाय शशांक शाह। इस मूवी में लारा दत्ता और विनय पाठक लीड रोल में हैं। सो बेसिकली मिहिका नाम की एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है जो अपनी दिल्ली की फ्लाइट मिस कर देती है, एंड अपेरेंटली उसको मनु गुप्ता से मिलना होता है, उसकी बहुत बातूनी सी आदत को बर्दाश्त करके उसके साथ दिल्ली पहुंचना होता है। अब इस पूरे रस्ते में किस तरीके से क्या चीज होती है इज वॉट द मूवी इज ऑल अबाउट। अ डेफिनेट वॉच आई मस्ट से। बाकी मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की बातें बाकी हैं, बट इन अ व्हाइल टिल देन यू एंजॉय द अपकमिंग सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: हंसना और हंसाना मुझे काफी पसंद है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशा आए, जिस दिन मूड खराब हो जाए उस दिन तो लगता है कि भाई साहब कोई एस्केप दे दो। और मेरे लिए एस्केप होता है कॉमेडी फिल्मों का। हाँ जी, और आज कुछ अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की बात कर रही हूँ थ्रू माय पांच का पंच लिस्ट। तो पेन और पेपर लेके नोट डाउन करने की शुरुआत कर दीजिए। सबसे पहले इन द लिस्ट वी टॉक्ड अबाउट दूल्हे राजा, नंबर दो पे वी टॉक्ड अबाउट भेजा फ्राई, नंबर तीन पे हमने बात की चलो दिल्ली के बारे में, और अब बारी है नंबर चार पे टू टॉक अबाउट खोसला का घोसला, वन ऑफ माई सुपर डुपर फेवरेट फिल्म्स, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2006, डायरेक्टेड बाय दिबाकर बैनर्जी, स्टारिंग अनुपम खेर, बमन ईरानी, परवीन दाबस, विनय पाठक, तारा शर्मा एंड रणवीर शौर्य। एंड भाई साहब ये फिल्म एक डिलाइटफुल कॉमेडी है अबाउट अ मिडिल क्लास family and उनका battle against a land mafia played by Baman Irani, mind you, जो उस family की property को illegal तरीके से capture कर लेता है। So all in all, the movie is a combination of humor with a touching story about family and persistence. चाहो तो अपने परिवार के साथ भी ये फिल्म देख सकते हो। चलो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फिल्म दो दुनी चार के बारे में, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2010, डायरेक्टेड बाय हबीब फाजिल, और इस मूवी में नीतू सिंह, ऋषि कपूर लीड रोल्स में नजर आएंगे। बाकी ये फिल्म एक हार्ट वार्मिंग कॉमेडी है, एक मिडिल क्लास स्कूल टीचर की कहानी है जिसमें वो अपनी जिंदगी चलाने के स्ट्रगल्स के बीच अपने परिवार के लिए एक गाड़ी खरीदने का सपना देखता है। बाकी मूवी का फन इज वेरी रिलेटेबल एंड इट कम्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज अबाउट फैमिली वैल्यूज। अ डेफिनेट वॉच आई मस्ट से। सो या, मेरी इस अंडररेटेड कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में अगर आप भी कुछ एडिशन करना चाहो देन फील फ्री टू डू दैट। MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति के नाम से मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टा पे कनेक्ट करके। इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।
3: यहां की लड़की बाबा, बदन पे साड़ी बाबा, माथे पे बिंदिया बाबा, कानों में बाली बाबा, पैरों में पायल बाबा, होठों पे लाली बाबा, हाय भोली भाली बाबा, हाय शर्मीली बाबा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलस्तां हमारा, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

यहाँ का मौसम जादू, यहाँ का सावन जादू, यहाँ का गुलशन जादू, यहाँ का जीवन जादू। बिरला टाटा बाबा, यहाँ का आटा बाबा, जूतों में बाटा बाबा, लड़की का चाटा बाबा। सचिन की बैटिंग बाबा, बच्चन की एक्टिंग बाबा, सुनील गावस्कर बाबा, कपिल द सिक्सर बाबा, लता मंगेशकर बाबा, जाकिर का तबला बाबा, भरतनाट्यम बाबा, यहाँ का भांगड़ा बाबा, यहाँ की लावणी बाबा, यहाँ का डांडिया बाबा। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलस्ता हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।

0: जीते हैं मस्त होके मस्ती में लोग सारे, जो है मजा यहाँ पे वो ना मजा कहीं पे। यहाँ की ईद बाबा, यहाँ दिवाली बाबा, यहाँ की होली बाबा, दुल्हन की डोली बाबा, चनिया चोली बाबा, मीठी बोली बाबा।
1: North, South, East or West, India is the best, the land of culture, the land of dreams, this is the land of you and me.
0: राजे शिवाजी बाबा, अकबर बादशाह बाबा, महात्मा गांधी बाबा, चाचा नेहरू बाबा, बाबा अंबेडकर बाबा, मदर टेरेसा बाबा।
1: We're taking it up and we're taking it down, this is the Indian sound, together so strong in God we trust, yeah, you cannot beat us.
0: ताजमहल बाबा, चार मीनार बाबा, आम का अचार बाबा, यहाँ का प्यार बाबा, ऐश्वर्य राय बाबा, सुष्मिता सेन बाबा, ऑल इंडिया रेडियो बाबा, डीडी मेट्रो बाबा, दूरदर्शन बाबा।

0: तारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशन हमारा। ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट, ईस्ट और वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट।
1: मिर्ची स्टोरीज
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
3: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची इट्स हॉट।
6: दिस शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। इस इंसान को तो डांस करता देखना चाहती हूँ मैं विजय वर्मा की बात कर रही हूँ यार, जो अपना डांसिंग साइड एक्सप्लोर करने वाले हैं विद हिज अपकमिंग फिल्म एंटनी, विच इज गोइंग टू बी एन एक्शन थ्रिलर। मूवी में विजय वर्मा के अलावा सनी देओल भी नजर आएंगे और इन दोनों का फिल्म में फेस ऑफ होगा। आई लाइक इट। हैवान 2 घंटे 44 मिनट के रन टाइम के साथ आने वाली है। CBFC ने UA 16+ सर्टिफिकेट के साथ फिल्म को पास कर दिया है। ऑल दो फिल्म के सेकेंड हाफ के कुछ डेरोगेटरी वर्ड्स हटाए गए हैं। एंड नाउ द मूवी इज सेट टू रिलीज ऑन द 11th of September। बर्थडे पे नहीं आएगी टीजर, आएगा टीजर होता है श्रुति। अरे क्या करे, बिहारी पना नहीं जाता है ना मेरे अंदर से। एनीवे, सो मैं बात कर रही हूँ अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड फिल्म लव एंड वॉर के बारे में, जिसमें आलिया भट्ट, रणबीर कपूर और विकी कौशल लीड रोल्स निभाते नजर आएंगे। सो द अपडेट वॉज की इस फिल्म का टीजर 28th of September, दैट इज रणबीर कपूर के बर्थडे पे आएगा। बट क्योंकि इस फिल्म का शूट ही हाल फिलहाल खत्म हुआ है, इसलिए अब डिसाइड किया जा रहा है कि भाई दिवाली पे रिलीज हो रही है रणबीर कपूर की एक और मच अवेटेड फिल्म रामायण के पार्ट 1 के साथ लव एंड वॉर के टीजर को अटैच किया जाएगा। बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट। अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं।
3: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कमेंट्स मेकिंग एवरीबॉडी लाफ।
2: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolder.
1: Only on Mirchi. It's hot.
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.

ओके फाइन, आप अपने फ्लाइंग चप्पल्स नीचे रख सकते हैं, गाना तो बंद कर दिया ना मैंने, बट एक्चुअली कंट्रोल नहीं होता यार जब इतने अमेजिंग गाने की बात आती है तो. एंड यू नो ये गाना था इन द फिल्म पाकीज़ा, और इस फिल्म में मीना कुमारी जी के डांस को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया. बट यू नो कमल अमरोही डायरेक्टोरियल इस फिल्म की शूटिंग के दौरान मीना कुमारी जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत सारे डांस मूव्स नहीं कर पा रही थी. तो उस वक्त डिसाइड किया गया कि मीना कुमारी जी के बदले पद्मा खन्ना जी को उनका बॉडी डबल बनाया जाएगा. एंड यू नो जब आप इस फिल्म को दोबारा देखेंगे कभी तो नोटिस करना, फिल्म के जितने भी लॉन्ग शॉट्स हैं उसमें आपको डांस करती हुई मीना कुमारी जी नहीं बट पद्मा खन्ना जी नजर आएंगी. यस, तो चलते चलते ये ट्रिविया याद रखना और साथ में आगे आने वाला गाना भी एंजॉय करना. राइट हियर ऑन मिर्ची, यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी, इट्स हॉट.

0: हेलो
1: हेलो हेलो
0: भैया, आवाज साफ नहीं आ रही। कम आ रही है आवाज
1: साहब? आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
0: हाँ जी,
1: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
0: भाई ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
1: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
0: आपको
1: यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
0: अरे क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
1: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
0: तो ड्रिल मशीन हमारे लेके तो चोरी करने गया।
1: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
0: चोरी करने के लिए गया?
1: तुमने पहले क्यों
0: बताया? तू खुद चोरी कर रहा, मुझे फंसवाएगा बहन।
1: मेरी बात सुन,
0: माँ का तू मुझे मरवाएगा। कल तुझे मुझे फोन कर दिया बहन।
1: मेरी बात सुन।
0: हेलो
1: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
2: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
0: कहाँ से बोल रहे भैया?
2: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
1: अब ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
3: The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
4: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नोनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स। द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव।

एक इंसान का कोई एक केआरए रहता है, राइट, वो इंसान अपने केआरए को फुलफिल करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो दूसरी कैटेगरी ऑफ पीपल है, ओ हो, भगवान ने बड़े फुर्सत में बनाया है इनको, और इनको ना बहुत बड़ा लेवल का एम्पैथ भी बनाया है, क्योंकि अगर इनका केआरए है, उस केआरए का कंप्लीशन हुआ है नहीं हुआ है उससे इनको फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया भर के काम को अपने माथे पे उठाएंगे और सबका बोझ लेके बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो बताइए फिर, ये दूसरी कैटेगरी वाले क्या मैनेजर बन पाएंगे? सोचने वाली बात। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: भाई ऐसे लोग ना कभी भी मैनेजर्स नहीं बन सकते। हाँ
1: ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसमें दो तरह के लोग होते हैं।
0: क्योंकि बाबू मोशाय मैनेजर बनने के लिए तो आपको काफी ज्यादा मैनिपुलेटिव होना पड़ता है ना, इफ यू नो व्हाट आई मीन। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, और आज दुनिया में पाए जाने वाले दो प्रजाति के काम करने वालों की बात करना चाहती हूँ, जिसमें फर्स्ट आर द पीपल जो अपना काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉर्पोरेट में किसी

0: श्रोतागण कॉन्ट्रोवर्सीज के लिए तैयार हो जाएं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: क्योंकि नेटफ्लिक्स की मच कॉन्ट्रोवर्शियल स्टोरीज वापस आ रही हैं। मैं बात कर रही हूँ लास्ट स्टोरीज की, जिसका थर्ड सीजन इज सेट टू स्ट्रीम ऑन द प्लेटफॉर्म फ्रॉम द 18th of September। तो अगर अभी तक आपको पता नहीं है तो बताना चाहती हूँ, ये एक इंटरनेशनल एमी नॉमिनेटेड एंथोलॉजी सीरीज है जिनको चार अलग अलग डायरेक्टर्स अपनी कहानियों के साथ लेकर आते हैं। एंड द नेम्स इंक्लूड विक्रमादित्य मोटवानी, किरण राव, शकुन बत्रा एंड विशाल भारद्वाज। अगर अभी तक आपने इस एंथोलॉजी सीरीज के दो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज देख लीजिए, क्योंकि कहानियां अल्टीमेट लेवल की हैं। वो ऐसे टॉपिक्स को एक्सप्लोर करती हैं जिनके बारे में शायद हम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में सोचते होंगे और उसके बारे में डिस्कशन करना तो बहुत दूर की बात है। सो एक बार फिर से अपनी अपनी कहानियों के साथ ये डायरेक्टर्स जो हैं वो लस्ट, लव, रिलेशनशिप एंड रिप्रेस्ड डिजायर्स के फ्रेश पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लोर करने वाले हैं, जहां विक्रमादित्य मोटवानी की कहानी में लीड रोल निभाते नजर आएंगे राधिका आप्टे, कोंकणा सेन शर्मा, विजय वर्मा एंड अभिषेक बैनर्जी। वहीं शकुन बत्रा की कहानी में अली फजल और राधिका मदन लीड रोल्स में होंगे। विशाल भारद्वाज की कहानी थोड़ी अलग सी है क्योंकि इस बार वो रियल लाइफ कपल सिद्धार्थ और अदिति राव हैदरी को लेकर आ रहे हैं एंड भाई साहब किरण राव। शी इज कमिंग अप विद गुरफतेह पीरजादा एंड सना थम्पी। वैसे एक एक करके इन सारी कहानियों के टीजर्स एंड ट्रेलर्स रिलीज किए जा रहे हैं थ्रू दी OTT प्लेटफॉर्म्स ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आपने नहीं देखा अभी तक, देन डू गो चेक इट आउट। बट हाँ, स्टैट्यूटरी वार्निंग, अगर आपकी सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स है तो प्लीज इस सीरीज को अवॉइड ही करें। बाकी तो जैसे बच्चे को गुब्बारा काफी, वैसे समझदार को इशारा काफी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।
2: मिर्ची स्टोरीज,
3: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
4: भाई, एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
5: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार, इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
6: मिर्ची, इट्स हॉट।
7: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
8: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहां पर मैं आपके माइंड रीड करती हूं, आपको इन्फ्लुएंस करती हूं। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।

0: आओ मिलके आपके अंदर के फिल्मी डिटेक्टिव को जगाते हैं।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: सो दिस इज द न्यू गेम जो मेरे शो पे शुरू किया है मैंने। यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रॉम्प्ट्स देती हूँ जिसको सुन के समझ के आपको मूवी का नाम गेस करना होता है। एंड द ड्रिल दैट यू ऑलरेडी नो इज दैट आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके अपना नंबर भेजना होता है, फिर मैं आपको कॉल करके ये गेम खेलती हूँ। तो आज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है इस गेम के लिए नैना। आर यू रेडी?
3: हाँ हाँ मैं खेलना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रॉम्प्ट, गन्ने के खेत, ट्रेन जर्नी। बहुत बढ़िया। थ्री फ्रेंड्स, स्पेन जर्नी, पिंक फोन।
3: जिंदगी ना मिलेगी दोबारा।
0: क्या बात है। गेम शो, जैकपॉट, स्लम, डेस्टिनी।
3: स्लमडॉग मिलियनेयर।
0: बहुत बढ़िया। बिहार, गैंगस्टर, फादर्स रिवेंज, कोल माफिया।
3: गैंगस्टर फतेहपुर।
0: क्या बात है लड़की। चांदनी चौक, काला बंदर, गेंदा फूल।
3: दिल्ली सिक्स।
0: वाह वाह वाह। कोर्टरूम ड्रामा, फॉल्स केस, कंसेंट।
3: पिंक।
0: स्ट्रेंज आइलैंड, जॉम्बी, पार्टी, केओस।
3: गो गोवा गोवन।
0: क्या बात है, एकदम फिल्मची है लड़की। कॉलेज, फ्रेंडशिप, लव ट्रायंगल, कॉम्पिटिशन।
3: इश्क वाला, सॉरी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर।
0: हाँ, इश्क वाला लव। बट यस, बहुत बहुत मस्त खेला है यार।
3: थैंक यू।
0: तो चलिए इसी बात पे आपको बनाते हैं आज की
1: फिल्मी डिटेक्टिव।
0: Well, अगर आपके अंदर का डिटेक्टिव भी जाग रहा है इस गेम को सुन के, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, ये गेम वापस आएगा कल ना, राइट हियर ऑन मिर्ची। यू आर ट्यून्ड इन विद दिस लड़की बड़ी फिल्मी जिसका नाम है श्रुति। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
1: शंकर महादेवन,
2: यू रियली ऑल्सो रिवर्स एजिंग. तो हम गाने के बारे में बात करें, स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
3: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, नॉट सनस्क्रीन, द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
1: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
0: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood. Only on Mirchi, it's hot.
4: The show was absolutely amazing. Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
5: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स, मिर्ची हेल्पलाइन बोलिए।
0: इतनी गर्मी है यार, उसमें एसी नहीं चल रहा। लैंडलॉर्ड को कितनी बार बोला, रिपेयर ही नहीं करवाता, क्या करूं?
1: एसी नहीं चल रहा तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? सिंपल है, एयर लॉर्ड को बोलो, एयर लॉर्ड, ठीक है?
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 2011 जब आई थी तो हम भी आवारा ही हुआ करते थे। अरे शाम को 8-9 बजे तक बाहर घूमते थे क्योंकि ड्यूटी निभा के आ रहे होते थे। भाई आरजे बन चुके थे हम, मिर्ची घड़ी का टाइम 4:04।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर, कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: यार आज अतीत के पन्नों में खुद को ले चलते हैं और मैं याद दिलाऊंगा, साल 2007 का टाइम था, जुलाई का महीना था और मैंने आवारापन की सीडी खरीदी मिर्ची के इसी प्लेलिस्ट में। अपना वो आवारापन के सारे गाने डाले, तेरा मेरा रिश्ता पुराना ये वाला गाना था एंड मुझे याद है आवारापन का एक दो गाने और मैंने डाले। एंड फॉर मी ना दिस मूवी वाज लाइक कि मैं मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखनी है एंड श्रेया शरण थी इस पिक्चर में। एंड मैं एक बात जरूर कहूंगा यार कि इमरान हाशमी अपनी फिल्मों में एक्टिंग चाहे जैसी भी करें, उनकी फिल्म चाहे जितने भी पैसे कमाए, पर उनकी फिल्म के गाने इतनी तारीफें कमाते थे उसका कोई डाउट नहीं है। और आज लगभग 19 साल बाद भी ये चाम बरकरार है। ये नहीं बता रहा मैं कि मैं रेडियो में 19 साल पुराना हो गया, बस ये कहना चाह रहा हूँ कि तब हम आवारा थे क्योंकि भाई जवानी तब एकदम शुरू हुई थी और घर से बाहर रहते थे दोस्तों यारों के साथ। जब घर लौटे तो मम्मी पापा ही कहते थे एकदम आवारा गर्दी कर रहे हो आजकल तुम। हाँ ठीक है रेडियो में बोलने लगे हो पैसे कमा रहे, पर इसका मतलब थोड़े दिन भर बाहर घूमोगे। वैसे आपने भी लाइफ में कभी ना कभी ये सब सुना होगा, लेकिन जिंदगी का वो एक फेज था, ये नया फेज है और हम बातें करते हैं आपसे, आपका मन लगाते हैं ताकि हमारी और आपकी ये दोस्ती कंटिन्यू रहे। तो चले जी शाम शानदार की दो घंटे की आज की ये दोस्ती कंटिन्यू रहेगी और एक से एक गाने सुनाएंगे, मदहोश कर देंगे। फिलहाल तो सिद्धार्थ बसु इसी गाने को लेके आए हैं मिर्ची पर इट्स हॉट।

0: Mirchi. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La vieja la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो।
2: हाँ बोलो, कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल कौन रहे हो? कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तू कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ हो जाएगा। काम करो, एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया।
2: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot, it's hot.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी स्नो नो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

वो कहते हैं ना कि जब आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में फंसते हैं तभी तो आपकी असली मदद का समय होता है। और कतर ने ऐसे 16,000 पैसेंजर्स को मदद दी जो कि एयरपोर्ट पर फंसे थे ड्यूरिंग फेब्रुअरी। #974 हम आपको बता दें, CEO ऑफ कतर एयरवेज अब्दुल्ला अली ने यह बताया है कि ड्यूरिंग दी टफ टाइम्स ऑफ फेब्रुअरी 28 हमारे एयरपोर्ट पर 16,000 लोग जो हैं वो फंस चुके थे, और क्योंकि हमें COVID-19 पैंडेमिक का एंड 2022 फीफा वर्ल्ड कप का एक्सपीरियंस था, तो उस टाइम पर हमने लोगों के साथ आराम से मैनेज किया। इवन इन द क्राइसिस सिचुएशन वी वर अफर्म कि हमारी पूरी की पूरी टीम इस पूरे सिचुएशन को संभाल लेगी, एंड इसके लिए बाकायदा इंटीग्रेटेड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया, और तो और सभी लोग एक साथ आ गए एंड 16,400 स्टैंडर्ड पैसेंजर्स जो हैं उनकी जब तक फ्लाइट नहीं आई उनको सेफगार्ड किया, उनको एकोमोडेट किया, और उनकी फ्लाइट को रिशेड्यूल करते ही उन्हें यहां से आराम से भेजा। और मैं यही कहता हूं कि पर्दे पर बहुत चीजें बाद में पता लगती हैं, लेकिन सोचिए 16,400 पैसेंजर्स जो हमारे दोहा के हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फंसे थे उन सबकी मदद की कतर एयरवेज ने, एंड ये बता दिया कि जब बात एक्सपीरियंस की आए तो क्यों है हम दुनिया के सबसे बेस्ट एयरलाइंस। 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: गले हे कभी आना तुम मेरे गले,
1: कभी आना तुम अपनी गली,
0: कभी आना तू मेरी गली।
2: अरे जब यूफोरिया इतनी प्यार से बुला रहे हैं तो जाओ ना फिर इनकी गली। लेकिन यार हम जब बच्चे थे तो हम दूसरी गलियों में जाते थे लेकिन हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता था, हम डर जाते थे क्रिकेट खेलने में। हमें लगता था ये इनका होम ग्राउंड है, हम इनके साथ कैसे खेलेंगे, और उस चक्कर में जीता जीता मैच कई बार हार जाते थे। कॉन्फिडेंस ना लाइफ में बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान ना आधी जीत तो अपने कॉन्फिडेंस से ले आता है। और मैंने कॉन्फिडेंस का चरम देखा है डेरी क्वीन के वो सारे प्यारे प्यारे लोग जो हमें अपनी ब्लेजर्ड सर्व करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए। जब वो अपसाइड डाउन करके आपको ब्लेजर्ड सर्व करते हैं ना, तो उन्हें पता होता है कि ये यही रहेगा, क्योंकि अगर गिरा तो वो आपको दोबारा बिना किसी मनी चार्ज के वो वापस से देते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस हमें लाइफ में भी चाहिए होता है। वैसे डेरी क्वीन की बात यहां आई ऐसे कि पिछले दिन मेरे एक दोस्त का बर्थडे था, मैंने कहा यार अब बर्थडे तुम्हारा है तो केक तो हम लेके आएंगे। और जब हम केक लेकर आए तो हमने ये ध्यान दिया कि केक ऐसा हो जिसमें बच्चे भी खुश और बड़े भी खुश। फिर क्या था भाई, डेरी क्वीन का मैंने एक केक पकड़ा और वो था किटकैट केक। आराम से बच्चों ने खाया, फिर बड़ों ने भी अपना मन बहलाया, आइसक्रीम केक के साथ हम एकदम सेटल डाउन हो गए। और बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसी जगह है जहां पर आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाता है। मान लीजिए आपको आज डिनर करने का मन नहीं है, वीकेंड में प्लान नहीं बन पा रहा कहीं जाने का, तो बस निकल जाओ डेरी क्वीन। यहां आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो शायद आपको ट्राई तो करना ही चाहिए। मुझे इनका अनियन रिंग बहुत पसंद है, इनके मशरूम सॉस वाला बर्गर इज बेस्ट बर्गर, मैं इतना कह सकता हूं। एंड डू ट्राई अगर यहां जा रहे हो सॉफ्ट सर्व या फिर इनका ब्लिजर्ड, क्योंकि वो जो कॉन्फिडेंस के साथ आपको देगा ना, आप कहोगे ऐसा करो भाई एक और लगाओ हम भी देखें तुम्हारा कॉन्फिडेंस, फिर आपका भी बढ़ जाएगा। 89.6 डेरी क्वीन आपको कतर के अलग अलग इलाकों मिलता है। सबसे पहले बात करें वेस्ट वॉक, रमादा, अबू हमूर, मॉल ऑफ कतर, डीएफसी लैंडमार्क एंड सम अदर प्लेसेस। तो भैया अगली बार कॉन्फिडेंस की अगर कमी आ रही है तो डेरी क्वीन के ऐसे ही किसी को देखो जो आपको ब्लिजर्ड सर्व करते टाइम कॉन्फिडेंस के साथ अपसाइड डाउन सर्व करता है। 89.6 जितेंगे फिर अप ही अप रहोगे। इट्स हॉट।

0: मिर्ची स्टोरीज
1: बस 24 घंटे ही रहेंगी।
2: भाई एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
3: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
4: मिर्ची इट्स हॉट।
5: रेडी
6: रेडी
5: टू लर्न
6: यस
5: टू प्ले
6: एब्सोल्युटली
5: टू ग्रो
6: विद मेज़राती।
7: दिस स्कूल सीजन फ्यूल एवरी डे विद डिलीशियस एंड न्यूट्रिशियस मेज़राती फ्रेश प्रोडक्ट्स
6: मिल्क चीज योगर्ट लवने
7: From breakfast to lunchbox and snacks, Maserati has your family covered. Grow with Maserati freshly from Qatar.
8: The show was absolutely amazing.
9: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
7: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: शंकर महादेवन एंड ऐश्वर्या का फिल्म में इंट्रोडक्शन वो इसी गाने से है। लेकिन हमारे मम्मी पापा सबने हमारा एक चीज से इंट्रोडक्शन कराया कि ये है सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज गोल्ड।
1: गोल्ड अपडेट।
0: वेल ऑन फरदान एक्सचेंज पर इस वक्त जो आपको गोल्ड प्राइजेस मिल रहे हैं पैम्प के, वो मिलेंगे पैम्प 1 ग्राम गोल्ड लेनी फॉर्चुना बार एट 585 कतारी रियाल, पैम्प 5 ग्राम गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार एट 2743 कतारी रियाल, 10 ग्राम इज फॉर 5416 कतारी रियाल, पैम्प 1 आउंस गोल्ड लेडी फॉर्चुना बार 16743 कतारी रियाल एंड पैम्प का 10 तोला वाला गोल्ड बार जो मैं अक्सर खरीदता हूँ वो मिलेगा 62174 में। मस्त बोलो, इतने कहेगा कि ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप अगले दिन चाहें आपको फटाफट से सब कुछ फटाफट मिल जाता है, सोचना नहीं पड़ता है। That's why it's called safest investment. 89.6 Mirchi 1 par ye the gold rates from Al Fardan Exchange. Mirchi thoughts.
2: Stay ahead of today's gold rates with Al Fardan Exchange, PAMP's official agent in Qatar. Buy authentic Swiss-made 24-carat PAMP gold bars
3: and earn Qatar Airways Avios today.
2: Visit our branches or download the app now.

0: Hollywood, Bollywood, Bolder. Only on Mirchi. It's hot.
1: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
2: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
1: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डर, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डर, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: हर बार वही रेगुलर रिचार्ज क्यों? अपने हाला नंबर के लिए ओरेडो का योर स्पेशल ऑफर पाइए, मोर वैल्यू मेड फॉर योर नीड्स। अभी ओरेडो ऐप पर चेक करें या करीबी रिटेलर से मिलें। एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडो।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती, क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होठों पे अच्छी लगती है।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: संजू राठौड़ की आवाज में ये प्यारा सा गाना बैंगल सुनाया आपको किसने? और अब ये गौरव आपको सुनाएगा मिर्ची घड़ी का टाइम शाम के 5:03 के करीब।
1: टाइम चेक इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर।
0: आ गया दुनिया का एक और सेंसेशन आ गया। भैया आईफोन किसी सेंसेशन से कम थोड़े है। एंड 18th वर्जन जब हम सब के सामने आया तो बस दुनिया बिल्कुल चौंक गई, क्योंकि इसके नए सीईओ जॉन टर्नर साहब ने बताया कि हम अब ला रहे हैं एप्पल का वो फोन जो कि फोल्डेबल आईफोन होगा एंड नाम रखा iPhone 2। बिल्कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि हमारा ये फोन क्रांति लाने जा रहा है। इसके अलावा आईफोन 18 प्रो सीरीज, इसमें A20 प्रो चिप लगी है, 2 नैनोमीटर्स का प्रोसेस है एंड कुल मिलाकर उनका कहना है कि इससे फोन की बैटरी जो है वो और लॉन्ग लास्टिंग बन जाएगी एंड प्रोसेसर और तेजी से काम करेगा। वेल, अब पिछले वाले से नया वाला कितना बेहतर है ये तो आने वाले टाइम में पता लगेगा। पर मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, अच्छा खाना पीना खाते रहा करो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको ऐसे अच्छे फोन खरीदने हैं तो किडनी बहुत मजबूत होनी चाहिए और उससे भी ज्यादा हमारा जिगरा। 89.6 मिर्ची 1 पर मस्मोला गौरव आपके साथ। पहली बार हमने आईफोन 2 देखा और हमें लग रहा है यार कि छोटा टैबलेट या हाथ में ही है। मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milchi, burga.
1: हेलो
2: हेलो बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे, कभी उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी भी बात पे। तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मतर को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? मतलब मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं,
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकल कल भी आखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: The show was absolutely amazing.
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइज विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट SCT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।

बातें होती हैं और बातें कैसे खाने पीने तक पहुंच जाती हैं पता ही लग पाता है भाई। आफ्टर ऑल जब आपके दिलो दिमाग पर स्वाद छाया होता है तो बातें खाने पीने की आ ही जाती है। और खाने पीने की बात से एक बात तो है, ज्यादातर घरों में कलेश इसी बात को लेकर होता है, आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा, कुछ भी बना लो, कुछ भी बना लो, सब यही कहते हैं। लेकिन कोई नहीं रहता था कि वाकई में क्या बनेगा। लेकिन अगर आपको भी ऐसा कंफ्यूजन है तो सबसे अच्छा ना पापा जॉन्स के ये वाले ऑफर का फायदा उठाइए, क्योंकि पापा जॉन्स ने कहा है वो इस 17 सितंबर अपनी 20th एनिवर्सरी को स्पेशल बनाने जा रहे हैं। 5 लकी लोगों को साल भर के लिए पिज्जा सब्सक्रिप्शन मिलने जा रहा। तो क्या आप वो हैं जिसे अब अपने घर में ये बताना नहीं पड़ेगा क्या बनेगा, वो रोज वैरायटी के पिज्जा खाता रहेगा और साल भर तक उसे ये पिज्जा मिलेगा। यस, 17 सितंबर को पापा जॉन्स की 20th एनिवर्सरी पे, जहां उन्होंने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट करी है जिसमें सबसे पहले कैश रिवॉर्ड है 200,000 कतारी रियाल का, लेकिन उसके साथ उस आपको एक छोटा सा खर्चा करना है 50 कतारी रियाल का। अगर आपने 50 कतारी रियाल या उससे ऊपर का खर्चा किया बस आप इस ड्रॉ में शामिल हो जाते हो, और जितनी बार आप ये खर्चे करोगे उतनी बार आपके चांसेस बढ़ेंगे। क्या पता साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाए, क्या पता आपको 100,000 कतारी रियाल मिल जाए, 50,000 कतारी रियाल मिल जाए, और इसके बाद भी और ढेर सारे प्राइजेस इंतजार कर रहे हैं। तो बस पिज्जा खाते रहो, पापा जॉन्स को थैंक यू बोलते रहो, एंड लकी हुए तो पैसे तो मिलेंगे ही, क्या पता ये सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो पैसे बचेंगे भी। 89.6 मिर्ची वन पर मस्त मौला गौरव आपके साथ, मिर्ची वन, पापा जॉन्स, बेटर इंग्रेडिएंट्स, बेटर पिज्जा, इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव.

0: यार अभी 20 दिन और बचे हैं, कब आएगी मेरी सैलरी?
1: मस्त मौला गौरव।
0: सैलरी आए और आप राजा बन जाएं तो आपको 10 दिनों के बाद ऐसे ही रंक वाली फीलिंग आती है कि सारी सैलरी खत्म हो गई, कब आएगी अब दूसरी वाली। फिलहाल अगर आपके पास बची है तो घर भेजो ना, वहाँ सेविंग बढ़ाओ। अगर बात करें तो इस वक्त एक कतरी रियाल के बदले मिलने वाले इंडियन रुपीस 26.16 है, 26 रुपए 16 पैसे भारतीय मुद्रा के। वहीं 1 कतरी रियाल के बदले श्रीलंकन रुपीस 90.15। अगर बात करें जनाब पाकिस्तानी रुपीस की, वाहिद कतरी रियाल के बदले आपको मिलेंगे 76.10 पाकिस्तानी रुपीज। तपाई को नेपाली रुपीज का रिश्त आज 1 कतरी रियाल के बदले बाहिनी 41.70 का रिश्त आई। हाँ जी, 41.70 नेपाली रुपीज को रिश्त अगर 1 कतरी रियाल के बदले लेने जाएंगे तो। इसके बाद बांधु बांग्लादेशी टाका बात करके दादा एक्टा कतरी रियाल के बदले 33.79 तो 33.79 ऐसा रहते तो बांग्लादेशी टाका चलें तो। मस्त मोलो गौरव के साथ ये था करंट एक्सचेंज रेट एट आई पे मिर्ची थॉट।

अरे ना गिन नहीं गिन गिन क्योंकि एक एक दिन निकलता जा रहा है मेरे दोस्त, अब तो टिकट ले लो। आज 10th ऑफ सितंबर और इसके बाद बचेंगे 15 दिन और 15वें दिन सुहानी शाह हमारे कतर में होंगी, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह लाइव इन कतर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जहां पर मिर्ची आपके लिए लेकर आ रहा है एक ऐसा मेंटल मैथमेटिक्स का मैजिक जो इल्यूजन की दुनिया में भी आपको रियलिटी की फीलिंग देने वाला है। एंड इसके लिए आप जितनी जल्दी हो सके अपनी टिकट्स बुक कर लो क्योंकि सुहानी शाह हमारे कतर में आ रही है, द मेंटलिस्ट सुहानी शाह ऑन 25th ऑफ सितंबर एट QNCC, ब्रॉट यू बाय कतर कैलेंडर, प्रेजेंटेड बाय iPay एंड ढेर सारे पार्टनर्स जो इसमें हमारा साथ दे रहे हैं उनको भी दिल से शुक्रिया। एंड एक चीज जरूर कहूंगा, ये कैसी शाम होगी जहां पर म्यूजिक एंड डांस भी होगा, क्योंकि हमारी सुहानी से पहले स्टेज को धमाल के म्यूजिक के साथ अपनी परफॉर्मेंस से चार चांद लगाने आसी एंड चरण भी होंगे। वेल, इतना ही कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके टिकट्स बुक कर लो क्योंकि अर्ली बर्ड प्राइजेस अभी तो कंटिन्यू कर रहे हैं, किस दिन टाटा बाय कर दें ये मुझे नहीं पता। एंड जल्दी जल्दी अपनी टिकट्स बुक करो, एस सिटी स्नोनू पर आपको 30 कतारी रियल का कैशबैक मिल रहा है, साथ ही साथ आपको बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है अगर आप क्यू टिकट्स पे बुक कर रहे हो या फिर प्लेटिनम लिस्ट पे जा रहे हो, सारी जगहों पर अर्ली बर्ड प्राइजेस स्टिल कंटिन्यू कर रहे हैं। जाओ कपल में टिकट्स खरीदो और मैं कहता हूँ भर भर के खरीदो और सारे दोस्तों के साथ जाओ, क्या पता आप ही की टोली सुहानी की कैद में आए और आप सबके दिमाग को वो पड़ जाए। 89.6 मिर्ची 1 पर मीत सिंह टाटा बाय, मिलेंगे सैटरडे को फिर से शाम शानदार में, तब तक ले हबीबी मां सलाम, मिर्ची इट्स हॉट।

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: द मेंटलिस्ट सुहानी शाह.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में बज गए शाम के छह एंड यू एंजॉयिंग क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
4: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
5: क्लब मिर्ची

नमस्ते पीपल, आज का मूड फुल पावर जैसे पेट्रोल प्राइस का ग्राफ, बस हम ऊपर जाके खुश हो रहे हैं। क्लब मिर्ची शुरू हो गया विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका। आप सुनोगे वो बीट्स जो पार्लियामेंट डिबेट से ज्यादा हीटेड है। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज गाने भी रॉक करेंगे, बिकॉज वी आर हियर टू रॉक यू।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ,
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: लगे हुए गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो, कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा,
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज़ बोलेंगे। दस पत्ते
2: तोड़े, तोड़े,
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े,
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा,
2: ओके ओके सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा,
3: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा दुगड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले
3: तो मिस्टर, बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कुछ सुनेगा
3: तो सर, ये सर ये सब सुन चुके हैं, अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: The show was absolutely amazing.
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो, एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms. The Mentalist Suhani Shah.

चुनरी नहीं फिल्टर्स उड़ते हैं, रियल लाइफ में सब नॉर्मल, इंस्टा पे सब रॉयल। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, लेट्स गो।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: Ladies and gentlemen,

0: ब्राह्मण के इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बनाना पड़ता है।
1: चोरी कहा, चोर से दंगे लड़वाओगे भाई? आपको अपनी इज्जत करी ना तो ना सी, हमने अपनी इज्जत बहुत करी है भाई।
2: हमारी चोरियां चोरों से कम है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. See you at the show.
0: The mentalist Sohani Shah.

पार्टी पीपल क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका। एआई इतना स्मार्ट हो गया पर मम्मी का खाना खा लिया रिमाइंडर स्टिल इज अनडिफीटेड, इसीलिए तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी जीवन।

इंडिया इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची इट इज।

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंदिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

0: मिर्ची हेल्पलाइन।
1: अरे बोल ना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
0: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
1: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
2: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

चोरी हो या डेटा लीक, 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और तूने तो चोरी किया रे जिया।

0: Energy. Escabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Energy, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो
2: हाँ बोलो कौन
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोल कौन रहा है
3: बोल कौन रहे हो कंप्लेन करी थी आपने सीवर साफ करने की नीचे से बोल रहा हूँ आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ
2: बोल कौन रहे हो
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ बोला था
3: ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ
2: हाँ बोलो
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर ओ भैया मेरी जान को बचाओ यहाँ पे बहुत गहरा है यार आप लोग खाते क्या हो कितना गहरा कर दिया आपने
2: कौन बोल रहा है कहाँ घुस गए यार
3: हेलो इधर से बोल रहा हूँ आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए
2: हाँ हाँ बोला था हुआ क्या है कुछ तो बताओ
3: ज्यादा सवाल मत करो मेरी बात सुनो सिर्फ ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या क्या फेंक रहा है यार ऊपर से ओए बंद करो सर
2: कब आया था कब घुसा अंदर
3: फिर सवाल यार मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके
2: तो कहाँ से आया तो नहीं हो गया है
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में बाहर निकालो यार
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने
3: ऑफिस क्यों गए सीवर साफ करवाना था मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर
2: मेरी सीवर में घुसा है किसी और की सीवर में

सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

उम्र के साथ लाइफ का फंडा सिंपल हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्डन मिर्ची ओयोंदिका, बस ईएमआई टाइम पे भरना है, इसीलिए बाकी सब कुछ ये सरा सरा।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
0: The mentalist Suhani Shah.

सबको पीस चाहिए पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ लव मैची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए। दिल ने कहा चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से, क्यों

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
5: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
6: The Mentalist Suhani Shah.

Rave is the future.

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: जी बिल्कुल मिर्ची हेल्पलाइन, बता बेटा सवाल क्या है।
0: मेरे बेटे का वेकेशन है और मैं उसे कब से पूछ रहा हूँ कि उसे क्या करना है। स्विमिंग, म्यूजिक, पेंटिंग, डांस जैसे ऑप्शंस भी दिए उसे, पर वो जवाब ही नहीं दे रहा, क्या करूँ।
1: अरे सिंपल है ना, तू स्विमिंग वगैरह छोड़ दे, उसे पहले जवाब देना सिखा, समझे।
2: I'm joking.

0: 89.6 Mirchi 1. It's hot.
1: मिर्ची घड़ी में रात के आठ की पारिंग विद क्लब मिर्ची
2: टाइम चेक
3: इन एसोसिएशन विद नसीब मेडिकल सेंटर कतर्स लार्जेस्ट प्राइवेट मेडिकल सेंटर
4: लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
5: क्लब मिर्ची

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: हेलो हेलो
2: भैया, आवाज़ साफ नहीं आ रही। कम आ रही है आवाज़?
3: साहब, आपकी दुकान से कल एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन ले गया था, याद है आपको?
2: हाँ जी,
3: आपकी दुकान से एक हथौड़ा और एक ड्रिल मशीन लेके गया था मैं कल।
2: अच्छा अच्छा,
3: तो ये यार, ये ड्रिल मशीन कैसे दिए? ये बहुत आवाज कर रही है, एक सेकंड रुको।
2: भाई, ड्रिल मशीन तो आवाज तो करेगी यार।
3: एक सेकंड यार, आवाज करेगी। आप ये बंद कर, इसको बंद कर, बंद कर, बंद कर। रमेश, इसे बंद कर दे यार। आप मरवाओगे, ड्रिल मशीन आवाज करेगी, यहाँ सारे जाग जाएंगे तिजोरी खुलने से पहले।
2: मैं
3: आपको यही बता रहा हूँ, ये ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना मैं यहाँ पे, ये यहाँ पे जो मैं ड्रिल मशीन चला रहा हूँ ना, ये जिस कोठी में आया हुआ हूँ अभी, इनकी तिजोरी खुली भी नहीं है। मैं तो ये ड्रिल मशीन यार, इसको बंद कर दे रमेश, बंद कर दे। भाई साहब, ये तिजोरी मैं खोल रहा हूँ, ये आवाज बहुत कर रही है यार।
2: क्या कह रहे हो, तिजोरी ड्रिल मशीन कर क्या रहे हो आप?
3: इनके घर की चोरी कर रहा हूँ, खोपड़े में बात नहीं आती क्या तेरे यार? मुझे फंसवाएगा तू?
2: मैं तो ड्रिल मशीन हमारा लेके तो चोरी करने गया।
3: एक तो आवाज इतनी दी है तूने, ड्रिल मशीन के सारे जाग जाएंगे यार।
2: चोरी करने के लिए
3: तुमने पहले क्यों नहीं
2: बताया? चोरी कर रहा हूँ, मुझे
3: फंसवाएगा। बात सुन,
2: मुझे मरवाएगा, मुझे फोन कर दिया। हेलो
3: यार, कमाल है, आप तो मेरी रोजी फिर रात मार रहे हो।
4: सर मेरी बात सुनिए, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। आपकी दुकान का नंबर मुझे किसी ने दिया था, आप रेडियो मिर्ची में हैं, सब आपको सुन रहे हैं, आपके साथ मजाक किया है, मुर्गा बना दिया आपका।
2: कहाँ से बोल रहे भैया?
4: रेडियो मिर्ची से सर, आपके साथ मजाक किया है मैंने। जरा हंस के मेरे साथ एक बार।
3: अब ठीक है,
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स पटाक।
7: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
8: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
9: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम, एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट एसटीटी नूनो। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
10: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर्स गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: Ladies and gentlemen,

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
2: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
3: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, अब मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का। एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
2: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: The show was absolutely amazing.
5: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPE. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: into the human heart.
1: Welcome back. स्वागत है क्लब मिर्ची जा रही है विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। यार मुझे ऐसा लगता है कि जब इश्क का बुलावा आता है लोग शादी के लिए नहीं शादी में मिलने वाली बुफे के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं।

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे रिचर्ड मिर्ची और योतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iska bana, uska bana, saka bana. Burga, burga. Nafir wala burga. Mirchi burga.
2: हेलो
3: हेलो बेटा नवनीत
2: आप कौन
3: पापा कहाँ हैं
2: पापा तो बाहर हैं आप बताइए
3: बेटा ऐसा है आपके पापा और मैं हम हाँ। बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे को बता रहा था आशीष आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है उसे बात कर लेना फोन पे कभी उससे पूछ लेना मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है चलो हर बच्चा कर देता है लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा वो किसी को डांट नहीं सकता अच्छा बेटा तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे तो अभी आपके पास एक मिनट है क्या
2: लेकिन आपको काम क्या है
3: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था
2: पापा ने कहा था
3: चुप कर पापा ने कहा था मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने उठा के पटक के रख दूंगा बता रहा हूँ मतर को
2: क्या हुआ अंकल
3: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं उनको कुछ जरूरी काम था आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए तो मेरे से कहा था आप डांट देना मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में
2: अब मुझे क्यों डांट
3: चुप कर
2: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से आप मेरी बात सुनो मैं पापा से बात कर लूं
3: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूं मैं क्यों कर रहा था तूने
2: पापा को ऐसे किस बात का मुझे ये भी नहीं
3: पापा को किस बात का बुरा लगा इससे मेरे को क्या लेना देना है असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना
2: लेकिन बुरी क्या
3: लगी अंकल कल देखो एक मारूंगा
2: बदतमीजी क्या करी
3: बेटा ये अपने पापा से पूछना ना मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं
2: कह रहा हूं मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में
3: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं
2: ठीक है मैंने वो भी कर लिया मैं बदमाशी
3: ठीक है मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे
2: क्या बोलूं
4: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूं तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था तुम रेडियो मिर्ची पे
2: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को
3: चुप कर मारूंगा घुमा के पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: The show was absolutely amazing.
1: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
2: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek sham, ek stage aur do kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
3: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: Ladies and gentlemen.

0: स्किन रूटीन के बारे में जरा, कौन सा रेटिनॉल, कौन सा क्या कर रहे हैं आप?
1: नहीं, ऑनेस्टली आई जस्ट रियलाइज जस्ट 2 years बैक, नॉट दैट दैट्स मेड अ चेंज, टू पुट दिस सनस्क्रीन, इट्स नॉट सनस्क्रीन द वन व्हिच यू यूज फॉर द स्पॉटिंग थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट दैट सनस्क्रीन थिंग इज व्हाट माय वाइफ टोल्ड मी.
2: शंकर महादेवन भी सनस्क्रीन लगा रहे हैं, तो आप किस खेत की मूली हैं? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
3: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
4: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
3: लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑन अ राइड, क्लब मिर्ची.

साथ आप सुन रहे थे वाइब्स जो न्यूज से ज्यादा रियल और मीम्स से ज्यादा रिलेटेबल है। नेक्स्ट वीकेंड फिर से मिलेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिल्मी, ओवर एंड आउट। बट दिस इज योर साइन ऑफ ट्रैक, इट्स कॉल्ड लैबरिंथ बाय टाउनशिप रिबेलियन।

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन
1: जी, बिल्कुल बताइए सवाल क्या है।
0: मैं मार दूंगा यार, बहुत गुस्सा आता है। रोज कोई ऑफिस में मेरी चेहरे बदल देता है, क्या करूं?
1: सिंपल है, बॉस की गोदी में बैठ जा, प्रमोशन भी मिलेगा।
2: रॉक रॉक
3: मिर्ची गाड़ी।

फुल पावर जैसे पेट्रोल प्राइस का ग्राफ, बस हम ऊपर जाके खुश हो रहे हैं। क्लब मिर्ची शुरू हो गया विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका। आप सुनोगे वो बीट्स जो पार्लियामेंट डिबेट से ज्यादा हीटेड है। सीट बेल्ट बांध लो क्योंकि आज गाने भी रॉक करेंगे, बिकॉज़ वी आर हियर टू रॉक यू।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो,
3: गुड इवनिंग मिस्टर श्रीवास्तव, मैं मॉडर्न स्कूल से बोल रहा हूँ, आपके बेटे के स्कूल से। हाउ आर यू?
2: वेरी फाइन, थैंक यू।
3: अतुल वैसे पढ़ाई लिखाई में यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, लेकिन वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में बिल्कुल आगे नहीं है।
2: आई नो, वो खेल में कुछ ऐसा है नहीं खास ज्यादा। हाँ, नहीं लगता उसका।
3: नहीं, वही मैं आपको बताना चाह रहा था। अच्छा मिस्टर श्रीवास्तव, क्योंकि हम 26 जनवरी पे एक फंक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उसमें पार्टिसिपेट करें। पेरेंट्स पे डिपेंड करता है, जितना अच्छा परफॉर्म वो करेंगे उसके मार्क्स बच्चे को दिए जाएंगे। यू नो,
2: परफॉर्म मतलब क्या, परफॉर्म क्या करना होगा हमको?
3: कुछ भी ऐसा करिएगा जो कि बच्चों की चीज हो। आप प्लीज आके यहाँ पे पार्टिसिपेट करिए। आप आओ मिलो शिलो शालो करिए ना यहाँ पे आके स्टेज पे।
2: गेम है क्या ये?
3: आओ मिलो शिलो शालो,
2: पेरेंट्स को परफॉर्म करना होगा?
3: वो सिर्फ आप ही को परफॉर्म करना होगा, आप ही को ये पूरा बोलना होगा, आओ मिलो शिलो शालो। एक्चुअली प्रॉब्लम भी है, हमारे पास चार ही थे उसमें से यही बचा है। आओ मिलो शिलो शालो अगर आप ले सकते हैं तो आप इसे प्लीज परफॉर्म कर लीजिए ताकि उसके मार्क्स अच्छे आए। राइट,
2: पूरी कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट।
3: देखिए शुरू ऐसे होता है, आप मेरे साथ साथ बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। राइट, और इसमें बीच में ना क्लैप करना होता है इस तरह। आओ मिलो,
2: आओ मिलो
3: शिलो शालो, कच्चा धागा,
2: कच्चा धागा,
3: रेस लगा लो,
2: रेस लगा लो,
3: दस पत्ते तोड़े,
2: दस पत्ते तोड़े,
3: एक पत्ता कच्चा,
2: एक पत्ता कच्चा।
3: इसको ना प्रैक्टिस करिएगा, आप तेज से बोलेंगे, दस पत्ते तोड़े
2: तोड़े।
3: या मिस्टर श्रीवास्तव, दस पत्ते तोड़े, दस पत्ते तोड़े,
2: दस दस दस पत्ते तोड़े।
3: हिरण का बच्चा, हिरण का बच्चा, सब हिरण का बच्चा।
2: ओके ओके, सॉरी सॉरी, हिरण का बच्चा।
3: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
2: घोड़ा दौड़ा टुकड़ू दू,
3: श्रीवास्तव बोले कुकड़ू को,
2: श्रीवास्तव बोले
3: तो मिस्टर श्रीवास्तव। बहुत अच्छा लगता है जब बाप कोई बच्चा बनने की कोशिश करता है। मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, आपकी वाइफ ने मुझे नंबर दिया था, आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका मुर्गा बन गया है।
2: यार ये कुछ नहीं,
3: सर ये सर ये सब सुन चुके हैं। अब प्यार से एक बार बोल दीजिए, इसको रिपीट कर लीजिएगा, बार बार बोलिएगा कुकड़ू को।
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: इट्स हॉट।
4: मिर्ची वन, इट्स हॉट।
6: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो
5: ऑन अ राइड।
7: क्लब मिर्ची विद ऑयल ओंटेका एंड

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: Ladies and gentlemen.

0: रहा है, मैं पेड़ पे नहीं उगते, हमें बढ़ाना पड़ता है।
1: चोरी कहा, चोरी से दंगे लड़वाओगे भाई? आपको अपनी इज्जत प्यारी ना तो ना सिंह, हमने अपनी इज्जत बहुत प्यारी है भाई।
2: हमारी चोरियां चोरों से कम है।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.
2: सुनिधि चौहान, आपका हर गाना हमारा फेवरेट गाना है, लेकिन आपका कौन सा खाना आपका फेवरेट खाना है?
3: दाल चावल और अचार ना हो आम का, हाँ पानी आ गई। स्पाइस होना चाहिए ना लाइफ में, तो गले को भी स्पाइस की जरूरत है। मिर्ची मैं दिल्ली में बहुत खाती थी, क्योंकि वहाँ नॉर्थ इंडियन फूड में खाना में होती ही है मिर्ची। यहाँ आके आदत हो गई कम मिर्ची खाने की।
2: सुनिधि चौहान, तो फिर लगाइए ना आदत मिर्ची ज्यादा खाने की भी और मिर्ची ज्यादा सुनने की भी। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood Bordal. Only on Mirchi. It's hot.

पीपल क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। एआई इतना स्मार्ट हो गया पर मम्मी का खाना खा लिया रिमाइंडर स्टिल इज अनडिफीटेड, इसीलिए तेरे बिना बेसुआदी बेसुआदी जीवन।

इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची इट इज।

क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका के साथ. दिस प्लेलिस्ट इज मूविंग फास्टर देन योर वीकेंड क्रश. वी हैव केसरिया फॉर यू राइट नाउ. लेट्स गो.

भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौको ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: हेलो मिर्ची हेल्पलाइन।
1: यस ऑफ कोर्स मिर्ची हेल्पलाइन, बताइए।
0: हेलो सर, मेरी फोटो में ना कभी भी स्माइल अच्छी नहीं आती, क्या करूं?
1: बेबी डॉल, स्माइल फोटो में नहीं होटो पे अच्छी लगती है।
2: खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

चोरी हो या डेटा लीक, 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और तूने तो चोरी किया रे जिया।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burka, burka. Navid bala burka. Mirchi burka.
2: Hello.
3: Hello.
2: कौन?
3: हेलो।
2: हाँ बोलो, कौन?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोल, कौन रहा है?
3: बोल, कौन रहे हो? कंप्लेंट करी थी आपने सीवर साफ करने की। नीचे से बोल रहा हूँ, आपके सीवर में घुसा पड़ा हूँ।
2: बोल, कौन रहे हो?
3: आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ बोला था।
3: ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: तो पूछ के घुसे थे क्या अंदर?
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ।
2: हाँ बोलो।
3: यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर। ओ भैया, मेरी जान को बचाओ, यहाँ पे बहुत गहरा है यार। आप लोग खाते क्या हो? कितना गहरा कर दिया आपने?
2: कौन बोल रहा है? कहाँ घुस गए यार?
3: हेलो, इधर से बोल रहा हूँ। आपने बोला था ये अपना सीवर साफ करने के लिए।
2: हाँ हाँ बोला था। हुआ क्या है, कुछ तो बताओ।
3: ज्यादा सवाल मत करो, मेरी बात सुनो सिर्फ। ओए यार आपके टॉयलेट पे अपनी कोई बैठा के क्या फेंक रहा है यार ऊपर से? ओए बंद करो सर।
2: कब आया था, कब घुसा अंदर?
3: फिर सवाल यार, मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ, मुझे बाहर निकालो यार कैसे भी करके।
2: तो कहाँ से रहा है? तो नहीं हो गया है?
3: सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी, नीचे घुसा पड़ा हूँ आपके सीवर में, बाहर निकालो यार।
2: मैं तो इधर ऑफिस में हूँ अपने।
3: ऑफिस क्यों गए? सीवर साफ करवाना था, मैं तो यहाँ पे घुसा पड़ा हूँ ना अंदर।
2: मेरी सीवर में घुसा है, किसी और के सीवर में घुस गया?
3: ये बदबू से पता चल रहा है सीवर तेरा ही है यार।
2: सीवर में मरा रहा है तू?
3: गाली तो मत दो।
2: हेलो
3: हेलो,
2: फिर फोन कर दिया तूने?
3: अच्छा है, सीवर साफ होने का काम करो। एक चीज बोलो।
2: क्या बोलो?
3: कुकड़ू को
4: सर, आई एम सो सॉरी, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने बताया था कि आपने सीवर साफ करने की कंप्लेंट करी थी। आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपका पुरका पर क्या है?
5: मुर्गा नवेद के साथ, only on Mirchi. It's hot.
6: The show was absolutely amazing.
7: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहां पर मैं करूंगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. एक शाम एक स्टेज और दो कमाल। बुक योर टिकट्स नाउ एट STT Snoo Noo। टिकट्स अवेलेबल इन ऑल लीडिंग टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स।
9: लेडीज एंड जेंटलमैन,

मैं वीकेंड का असली रूल सिंपल है, कैलोरीज काउंट मत करो, रिग्रेट्स मंडे को शेड्यूल करो, और जो लोग मैं सिर्फ एक गाना सुन के सो जाऊंगा बोलते हैं उन पे कभी भरोसा मत करो। डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन विद यू टुनाइट ऑन क्लब मिर्ची।

साथ लाइफ का फंडा सिंपल हो रहा है, जो होगा देखा जाएगा। क्लब मिर्ची विद डीजे मिर्ची, एडन मिर्ची, ओयोंदिका, बस ईएमआई टाइम पे भरना है, इसीलिए बाकी सब कुछ।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सोहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

सबको पीस चाहिए पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ लव मैची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: Ladies and gentlemen,

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: इंडियन एक्टर्स में से अक्षय कुमार इज द प्रैंकस्टर ऑन सेट. अगर सिंगर्स की बात करें तो अनुराधा पौडवाल से पूछते हैं.
4: उदित नारायण आई वुड से यू नो ही वाज मोर ऑफ अ प्रैंकस्टर देन अ सिंगर बट अ वेरी लवेबल प्रैंकस्टर एंड ऑल द टाइम ही यूज्ड टू कीप ऑन टॉकिंग एंड पासिंग सम कॉमेंट्स मेकिंग एवरीबडी लाफ.
3: ये थी अनुराधा पौडवाल टॉकिंग अबाउट द वन द ओनली सर सर सर सर उदित नारायण ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड पौडवाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Boldar.
5: Only on Mirchi. It's hot.
6: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi helpline?
2: अरे बोलना मामू, मिर्ची हेल्पलाइन, व्हाट इज द क्वेश्चन?
1: क्या बताऊं सर, बहुत दुविधा है, समझ नहीं आ रहा प्यार चूज करूं या करियर।
2: अरे सिंपल है रे, तुम ना वो चूज करो जिससे तुम्हारा खर्चा निकले।
3: आपसे पूछना था, आप जो ये सब बोल रहे हैं, इसके पैसे चार्ज करते हैं या ये मुफ्त का ज्ञान है?

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: The show was absolutely amazing.
2: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ. There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है. जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को. इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में. सी यू एट द शो.
3: And to add the double bonanza of entertainment, get ready to watch music and dance duo Charan and RC. Ek Sham, Ek Stage aur Do Kamal. Book your tickets now at SCT Snuno. Tickets available in all leading ticketing platforms.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: Ladies and gentlemen.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल देगा, एक दिन सब ठीक होगा, बस वाईफाई स्ट्रॉन्ग हो जाए, इतनी ही ख्वाहिश है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल देगा, एंड इफ योर वाईफाई इज स्ट्रॉन्ग कैच अस ऑन सोशल मीडिया, डीजे रिचर्ड ऑफिशियल एंड ऑयल देगा, AYANTIKA।

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's Hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's Hot.
3: कविता कृष्णमूर्ति, ऐसा कौन सा गाना है जो आप रात के 12 बजे भी गा सकती हैं, सुबह के 6 बजे भी गा सकती हैं?
4: ये गाना आप जब भी बोले मैं कभी भी गा सकती हूँ। गाना रात को 12 बजे भी कोई उठाएगा तो मैं ना नहीं करूँगी इस गाने के लिए।
5: दिल ने कहा चुपके से ये क्या हुआ,

0: हुआ चुपके से, ये क्या हुआ चुपके से।
1: कविता कृष्णमूर्ति, आप ये गाना कभी भी गा सकती हैं और हम ये गाना कभी भी सुन सकते हैं। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: to the human heart.
1: Welcome back. स्वागत है क्लब मिर्ची जा रही है डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका. यार मुझे ऐसा लगता है कि जब इश्क का बुलावा आता है लोग शादी के लिए नहीं शादी में मिलने वाली बुफे के लिए ज्यादा एक्साइटेड होते हैं.

I call a half a minute.

मैसेज का रिप्लाई देना जरूरी नहीं, कभी कभी सीन भी एक कंप्लीट पैराग्राफ होती है। डीजे मिर्ची और योंतिका आपके साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो
2: बेटा नवनीत,
1: आप कौन?
2: पापा कहाँ हैं?
1: पापा तो बाहर हैं, आप बताइए।
2: बेटा ऐसा है, आपके पापा और मैं, हम बचपन से बड़े अच्छे दोस्त हैं। मेरे को बता रहा था आशीष, आपके पापा ने बताया था मेरे को कि बेटा है, उससे बात कर लेना फोन पे कभी, उससे पूछ लेना। मेरे को आपके पापा ने कहा था कि मेरा बेटा कभी कभी शरारत भी करता है, चलो हर बच्चा कर देता है, लेकिन आशीष दिल का बड़ा अच्छा है, क्योंकि मेरे बचपन का दोस्त है ना आपका पापा, वो किसी को डांट नहीं सकता। अच्छा बेटा, तुम्हारे पापा ने मेरे से ये कहा था आशीष ने कि तू ना नवनीत को फोन कर लियो, क्योंकि वो तो कभी डांटता नहीं है आपको किसी बात पे। तो अभी अभी आपके पास एक मिनट है क्या?
1: लेकिन आपको काम क्या है?
2: बस एक मिनट तक मेरे को आपको डांटना था।
1: पापा ने कहा था?
2: चुप कर। पापा ने कहा था? मेरे दोस्त का पीछा ले रखा है तूने, उठा के पटक के रख दूंगा, बता रहा हूँ मैं तेरे को।
1: क्या हुआ अंकल?
2: बेटा आपके पापा ने कहा था मेरे से कि वो टाइम पे वो निकल गए हैं, उनको कुछ जरूरी काम था, आपको डांटने का दिल कर रहा था तो वो डांट नहीं पाए, तो मेरे से कहा था आप डांट देना, मेरे जो दोस्त तो दोस्त है ना हम आपस में।
1: अब मुझे क्यों डांट?
2: चुप कर।
1: किस तरह बात कर रहे हैं मेरे से? आप मेरी बात सुनो, मैं पापा से बात कर लूँ।
2: पापा से बात करेगा दांत तोड़ दूंगा, ऐसे बैठे बैठे पापा की तरफ से डांट रहा हूँ मैं। क्यों कर रहा था तूने?
1: पापा को ऐसे किस बात का बुरा? मुझे ये भी नहीं
2: पापा को किस बात का बुरा लगा, इससे मेरे को क्या लेना देना है। असल में पापा आपके बड़े बिजी हैं आज, तो मेरे को मैसेज किया था उन्होंने कि वह उसको डांट देना।
1: लेकिन बुरी क्या लगी?
2: अंकले कल भी आखो एक मारूंगा।
1: बदतमीजी क्या करी
2: थी? ये अपने पापा से पूछना ना, मैं आपके बीच में क्यों पढ़ूं?
1: कह रहा हूँ मैंने कोई ऐसी बदतमीजी की नहीं इन दिनों में।
2: एक मरना घुमा के मैंने की नहीं।
1: ठीक है, मैंने वो भी कर लिया, अब मैं बदमाशी।
2: ठीक है, मेरे साथ बोल कुकड़ू को बेटे।
1: क्या बोलूं?
3: नवनीत कुकड़ू को बोलो मैं रेडियो मिर्ची से नवनीत बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा ने ही मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, तुम रेडियो मिर्ची पे।
1: आपको पापा ने ऐसे कब बताया था मेरा मुर्गा बनाने को?
2: चुप कर, मारूंगा घुमा के। पापा ने कब बताया था मुर्गा बनाने को?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। ये पटाक।
5: मिर्ची वन, इट्स हॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो, वी आर गोना गो ऑन अ राइड।
0: Club Mirchi with Oyon Deka and T.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi stories.
2: बस 24 घंटे ही रहेंगी
3: भाई। एक कंपनी ने एक एम्प्लॉय के 5 साल काम करने के बाद भी सैलरी बढ़ाई नहीं बल्कि कम कर दी।
4: भाई सच में इसकी हुई है सैलरी स्लिप। यार इतना वक्त जॉब करके लोग पेंशन की तरफ बढ़ते हैं, ये सिर्फ टेंशन की तरफ बढ़ रहा है।
5: मिर्ची, इट्स हॉट।
6: द शो वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग।
7: हेलो कतार, आई एम सुहानी शाह एंड आई एम कमिंग टू यू गाइस विद माय शो। एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ ड्रामा और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। इट इज ब्रॉट टू यू बाय कतार कैलेंडर एंड इट्स प्रेजेंटेड टू यू बाय आईपे। 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। सी यू एट द शो।
8: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: कुमार शानू, आपके हिसाब से आपके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर कौन थे?
4: मेरा कॉलिग के बारे में मैं आज तक कभी कुछ नहीं बोला, मैं ना बोलना चाहता हूँ। हमारे जो कॉलिग्स थे, दे आर ऑल ग्रेट सिंगर्स, अलग अलग अपना पहचान बनाया, जो आज के सिंगरों में है नहीं, पहचान है नहीं किसी का, एक ही टाइप का सिंगर आपको 6 मिल जाएगा।
3: वेयर इज द लाई कुमार शानू, वेयर इज द लाई? आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बॉलीवुड बोल्डाल,
2: बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: The show was absolutely amazing.
6: Hello Qatar, I am Sohani Shah and I'm coming to you guys with my show. एक ऐसा शो जहाँ पर मैं आपके माइंड रीड करती हूँ, आपको इन्फ्लुएंस करती हूँ। There's going to be a lot of drama और बहुत मजा आने वाला है। जो शो हो रहा है वो हो रहा है QNCC पे 25 सितंबर को। It is brought to you by Qatar Calendar and it's presented to you by IPay. 25 सितंबर की शाम तैयार रहिए मुझे मिलने के लिए, जहाँ पर मैं करूँगी आपसे बातें और जानूंगी क्या सोच रहे हो आप अपने मन में। See you at the show.
7: Ladies and gentlemen, we are gonna go on a ride.
0: Club Mirchi.

मंडे को सभी जॉम्बी नेशन पहुंच जाएंगे, फ्राइडे को सभी रोमियो है, ठीक है। क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका, और साथ में मैं और तू।

साथ आप सुन रहे थे वाइब्स जो न्यूज से ज्यादा रियल और मीम्स से ज्यादा रिलेटेबल है. नेक्स्ट वीकेंड फिर से मिलेंगे. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिल्मी. ओवर एंड आउट. बट दिस इज योर साइन ऑफ ट्रैक. इट्स कॉल्ड लैबरिंथ बाय टाउनशिप रिबेलियन.